मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन

0: लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं समूह स्वर में योगेश की लिखी इस मातृवंदना से।

0: हेमा देसाई और साथियों के गाए इस रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन, आलेख श्री हरिप्रकाश वत्स का है।
1: भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत निरंतर पंचवर्षीय योजनाएं क्रियान्वित हुई। समाज के लोगों की सुविधाओं के लिए नई नई तकनीक बढ़ती गई, संयोजन बढ़ते गए। बड़े बड़े शहरों से छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के उद्देश्य से तत्कालीन सरकारों ने पक्की सड़कों का निर्माण कराया। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे पूरे देश में हरेक राज्य में शहर से लेकर छोटे छोटे गांव तक पक्की सड़कों का पूरा जाल बिछ चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप गाँव से छोटे और बड़े शहरों तक आने जाने की सुविधा उपलब्ध है। सभी छोटी से लेकर बड़ी सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए सब प्रकार के वाहन जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ऑटो, ट्राईसाइकिल, चार पहियों वाले वाहन, कारें, बसें, ट्रक इत्यादि की सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। सरकारों ने मानव जीवन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सड़कों पर दौड़ने वाले सभी प्रकार के वाहनों को संचालित करने हेतु यातायात के लिए उचित और कारगर नियमों का भी निर्धारण किया, जो हमारे जीवन की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी भी थे। इनके उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित कानूनों के बावजूद उन नियमों का पालन कराने वाले सरकारी तंत्रों के सक्रिय होते हुए भी आज ये एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा है कि अपनी ही इन सड़कों पर चलते हम कितने सुरक्षित हैं। हम प्रतिदिन संचार माध्यमों में देखते हैं या पढ़ते हैं कि सड़कों पर दुर्घटनाओं में हर रोज न जाने कितने ही लोग मर रहे हैं और इतने ही गंभीर चोटों से घायल हो रहे हैं। सड़कों पर हर दिन होने वाले हादसों के कारकों पर यदि हम विचार करें तो ये स्थिति उभर कर सामने आती है कि सड़कों पर चलने वाले वाहनों के चालक सरकार द्वारा बनाए गए सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन शायद भली प्रकार से नहीं करते। यद्यपि इन सभी वाहनों के चालकों को सरकारों द्वारा जरूरी लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें उनके द्वारा चालित वाहन के लिए सभी प्रकार के सुरक्षा कवच प्रदान किए गए हैं, किंतु इन सभी के द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर भी सड़कों पर दुर्घटनाएं घटती। अधिकतर दुर्घटनाएं वाहन चालकों द्वारा या तो नशे में वाहन चलाने पर या लापरवाही के कारण घटती हैं। वाहनों की गति सीमा से अधिक होने पर भी वाहन अनियंत्रित हो जाते हैं, जो यात्रियों के साथ साथ सड़कों पर पैदल चलने वालों की भी जान ले लेते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। शहरों के चौक चौराहों पर यद्यपि यातायात पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए यातायात को सुगम और सुविधापूर्ण बनाने में मदद करती है, किंतु फिर भी पुलिस की नजरों से बचते हुए लोग अपने मोबाइल पर बातचीत करते हुए एक हाथ से वाहन का हैंडल पकड़कर वाहन चलाते हैं, गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट पहने और नशा कर व्यावसायिक गाड़ियां सीमा से अधिक सवारियां लेकर चलती हैं। कई बार इसके साथ ही साथ वे ट्रैफिक सिग्नल की परवाह न करते हुए निर्धारित लेन का उल्लंघन करते हैं, वाहनों को तेज गति से चलाते हैं। कुछ वाहनों को बिना लाइसेंस वाले अनाधिकृत चालक चोरी छुपे चलाते हैं, जिनमें छोटे कम उम्र के ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता पिता उन्हें अपने वाहन चलाने की अनुमति अंधे प्यार वश दे देते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करके वे अपने बच्चों को स्वयं उनके लिए और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए मौत का लाइसेंस दे देते हैं। इतने पर भी वे लापरवाही बरतते हैं, जो उनकी संवेदनहीनता का परिचायक है। जनता को अति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष सड़क यातायात सुरक्षा सप्ताह भी समय समय पर मनाया जाता है। आइए हम सबसे पहले अपने आप को जागरूक बनाएं और यातायात के नियमों का पालन स्वयं करें और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी उनका पालन करना सिखाएं।
0: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आलेख श्री हरिप्रकाश वत्स का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस कान।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुँच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहाँ जहाँ श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में गायन स्वर था उत्तरा केलकर और अनूप जलोटा का। आकाशवाणी के संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कृषि चर्चा का। प्राकृतिक खेती के लाभ इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीतीश तिवारी।
1: किसान भाइयों, मैं डॉक्टर नीतीश तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आज आपसे जो चर्चा का विषय है वो है प्राकृतिक खेती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में हम प्राकृतिक खेती के बारे पर विशेष रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश, हमारा प्रदेश इस प्रकार की खेती को बढ़ावा दे रहा है। राज्य शासन की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से हर जगह पे इस प्रकार की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम आज इस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती में कैसे करना, क्या करना और इसमें किस प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। प्राकृतिक खेती का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो भाग है, जिसको किसान भाइयों से मैं साझा करना चाहूँगा, वो यह है कि प्राकृतिक खेती में आपको बीज के अलावा और किसी भी प्रकार की बाहरी चीज़, यानी कि खाद, दवाई, बीमारी की दवा या कीड़ों की दवा या खरपतवार, किसी भी प्रकार का रसायन का उपयोग हमको नहीं करना है। साथ ही हमको जैविक जो पदार्थ हैं, वो जैविक पदार्थ का भी हमको तभी उपयोग करना है जब वो किसान के स्वयं के खेत में ही निर्मित हो, जैसा कि गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम केचुआ खाद कहते हैं, हरी खाद, इस प्रकार की खादों का प्रयोग हमको करना है। किसी भी बाहरी तत्व का हमको प्राकृतिक खेती में उपयोग नहीं करना। अब इस खेती का ये प्रमुख बातें मैंने आपको जैसे बताई, उसके उपरांत हमको करना क्या है ये हमें ध्यान देना है। जैसे कि हम बीज की सामान्य बुवाई करते हैं, जैसा सामान्य खेती में, वैसा ही प्राकृतिक खेती में भी हमें बुवाई करना है। बुवाई करने के उपरांत जो सिंचाई हमें करना है, या तो हम वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं तो वर्षा पे हम निर्भर रहेंगे, अन्यथा हमारे पास जो सिंचाई के साधन हैं उनसे हम समय समय पे फसल की मांग के अनुसार सिंचाई करते रहेंगे। तो ये प्रक्रिया हमें करनी है। इस दौरान हमें जो आवश्यक चीज़ें जो इस खेती के लिए लगेंगी वो हैं पोषक तत्वों का प्रबंधन। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, पोषक तत्वों का प्रबंधन हमको अपने ही खेत में निर्मित खाद से करना है, जो कि जैविक खाद होगा। और इसमें एक और बात आती है कि हम जब खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं इसमें, तो खरपतवार प्रबंधन भी हमको हाथों से यदि हम कर रहे हैं तो उस खरपतवार को कि भी हमको या तो खाद के रूप में उपयोग कर लेना है, या तो फिर हमको वहीं ज़मीन पे उसको दबा देना है, जिससे कि उसकी जो पोषक तत्व हैं वो फसल को प्राप्त हो। इस प्रकार की खेती करने से लागत भी कम होती है और हमें जो फसल उत्पादन प्राप्त होता है वो पूर्णतया रसायनों से मुक्त होता है। इसलिए प्राकृतिक खेती को किसान भाई अवश्य करें और उस पर आगे पढ़ें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य और बाकी समस्त जनता का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसके अलावा यदि हम बीमारियों के लिए और कीड़ों के लिए भी हम कोई पदार्थ डालना चाहते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बोला कि वो सारी चीज़ें खेत में ही, किसान के खेत में ही निर्मित होना चाहिए, बाहर से हमको उसको लेके नहीं आना है। तो इसलिए हम जैविक खेती में जिस प्रकार का बीजामृत, घन जीवामृत, इस प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, तो उन चीज़ों का निर्माण हम अपने स्वयं के खेत में करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फसल सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।
0: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्राकृतिक खेती के लाभ। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीतीश तिवारी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 होने को हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण सुनिएगा शाम 5:10 पर। स्पोर्ट्स कैन अनुप्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम सुनिएगा रात 9:25 पर। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा 7:05 पर। इसमें सुनिएगा विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर डॉक्टर विकास गोयल से विशेष बातचीत। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री पंडित रामलाल बरेठ से खास बातचीत और कार्यक्रम स्थल पर योग विषय पर योग गुरु डॉक्टर राधिका चंद्राकर से विशेष संवाद। प्रस्तुत करता होंगे अंकुर शुक्ला। इनसे मिलिए में सुबह 8:30 पर सुनिएगा छत्तीसगढ़ी फिल्मों के प्रथम लेखक और निर्माता निर्देशक श्री मनु नायक से दीपक हटवार की भेंट वार्ता। सुबह 9:00 नवा बिहार में सुनिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर श्रीमती ममता भगत, सहायक संचालक महिला और बाल विभाग रायपुर ले बीरभान साहू के गोठ बात। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगी छाया चंद्राकर। इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज में सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहीर भैरव और रात 10:00 इस कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ही दोपहर 1:30 पर सुनिएगा पंडित अनिंदो चटर्जी का तबला वादन। ताल होंगे 3 ताल और रूपक ताल। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में सुबह 11:05 पर सुनिएगा फाल्गुनी पाठक की आवाज में गुजराती गीत। किसानों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर आज की बात का विषय होगा फसल चक्र परिवर्तन हेतु श्री अन्न मिलेट की खेती। हेलो चौपाल में लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग।

0: चालन लालजी साहू का प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। सदाबहार नखमे आपको सुनवाएंगे सुबह 11:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय होगा दोपहर 12:00। हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। और चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 9:15 पर, सुबह 10:30 पर, दोपहर 1:05 पर, दोपहर 2:00, दोपहर 2:30 पर, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने को हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। पहले संस्कृत में सुनिए, फिर हिंदी में।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल AI संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंश इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान AI इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ. मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः, 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिंदी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रं इति संबोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मन्त्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98

0: अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना

0: इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेक और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है मीडियम वेव और FM बैंड पर। 7:05 हुए हैं। पेश है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात साथियों, मैं हूं अंकुर शुक्ल और आप सुन रहे हैं सुबह की ताजगी से भरपूर आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। दोस्तों, जून की सुबह में अगर आपके शहर की खिड़कियों पर हल्की बारिश की बूंदें दस्तक दे रही हो, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हो और आसमान बादलों से सजा हो, तो मान लीजिए मौसम सिर्फ बदला नहीं है, उसने हमें प्रकृति के थोड़ा और करीब बुलाया है। बारिश का मौसम हमेशा हमें एक बात याद दिलाता है कि हमारी भागती जिंदगी के बीच भी धरती अपनी लय में चल रही है। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, भीगी सड़कें और ठंडी हवा, ये सब हमें ठहर कर आसपास देखने का निमंत्रण देते हैं। साथियों, हम अक्सर प्रकृति को देखने बाहर जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में प्रकृति जैसे खुद ही हमारे दरवाजे तक चली आती है। तो क्यों ना आज कुछ पल अपने लिए भी निकालें, एक कप चाय, खुली हवा और अपने शहर की इस खूबसूरत सुबह के नाम। तो चलिए इस सुहानी सुबह का सफर शुरू करते हैं।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़े, प्रकृति से नाता जोड़े। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत, सुरक्षित भविष्य।
4: साथियों, साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को दिशा देने का माध्यम भी है, और इसी विचार को अपने लेखन और जीवन में साकार करने वाले हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे पंडित माधवराव सप्रे। आज के दिन वर्ष 1871 में पंडित माधवराव सप्रे का जन्म हुआ था। पंडित माधवराव सप्रे को हिंदी के शुरुआती दौर के उन साहित्यकारों में गिना जाता है जिन्होंने शब्दों को केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का माध्यम बनाया। उनकी प्रसिद्ध रचना एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना जाता है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि संवेदनशीलता, जमीन से जुड़ाव और मानवीय मूल्यों का संदेश देती है। सप्रे जी ने अपने लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से उस समय समाज और राष्ट्र की चेतना को आवाज दी जब देश स्वतंत्रता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, वह समाज की आत्मा होती है। तो आज उनके शब्दों और योगदान को नमन करते हुए अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि कहानियां केवल पढ़ी नहीं जाती, वे समाज की सोच भी गढ़ती हैं।
5: मैं बहुत अमीर आदमी नहीं हूं, तो मेरे पास बिलियन पैसे हैं, करोड़ों होंगे, अरबों मेरे जेब में पड़े हैं, वो कहां ले जाना है। वी शुड स्पेंड इट हियर फॉर गुड थिंग्स। आई अर्न्ड इट, माय एक्सपीरियंस इज माय वेल्थ।

0: साथियों, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए समर्पित है जिसके बारे में समय रहते जानकारी और जांच कई जिंदगियों को बेहतर बना सकती है। सिकल सेल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य आकार की बजाय हंसिए या दरांती जैसी हो जाती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। थकान, दर्द, कमजोरी जैसी समस्याएं इसके साथ जुड़ सकती हैं। हमारे देश में और खास तौर पर मध्य भारत के कई क्षेत्रों में इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में जानकारी, समय पर जांच और सही परामर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इस बीमारी के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गोयल जी। विकास जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: जी नमस्कार।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि सिकल सेल रोग क्या होता है।
1: जी, सिकल सेल रोग एक तरह का आनुवांशिक रक्त रोग है जिसमें जो हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका आकार चेंज हो जाता है। नॉर्मली यह गोलाकार होती है लेकिन इसमें बीमारी की वजह से ये हसिए के आकार की हो जाती है और हसिए के आकार की होने की वजह से ही मरीज को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हसिए को इंग्लिश में सिकल कहते हैं, इसीलिए इस बीमारी को सिकल सेल रोग कहा जाता है।
0: जी सर, यह बीमारी क्यों होती है? क्या यह संक्रामक है या अनुवांशिक?
1: ये पूरी तरह से अनुवांशिक बीमारी है। अगर माता पिता इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो बच्चों को सिकल सेल होने की संभावना रहती है। यह संक्रामक नहीं है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। केवल जेनेटिक रीजन की वजह से ही मरीज को सिकल सेल बीमारी हो सकती है।
0: सर, अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें लोग अक्सर सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं?
1: सिकल सेल बीमारी में मरीज का खून कम हो जाता है और मरीज को बार बार पीलिया होता है। खून की कमी होने की वजह से उन्हें थकान, चक्कर, जल्दी थक जाना, ये सब लक्षण आ सकते हैं। पीलिया होने की वजह से यूरिन का कलर पीले कलर का होना और दूसरे लक्षणों में पूरे शरीर में दर्द होना, ये सब इसके कॉमन लक्षण होते हैं।
0: जी सर, क्या सिकल सेल केवल बच्चों में दिखता है या किसी भी उम्र में इसका पता चल सकता है?
1: अधिकांश मरीजों में यह सिकल सेल बच्चों में दिख जाता है लेकिन कुछ सिकल सेल माइल्ड वेरिएंट के होते हैं, मतलब कम सीरियस होते हैं, तो इनका पता हमें 10 साल 15 साल या उसके बाद भी पता चल सकता है।
0: जी क्या समय पर जांच और पहचान से इस बीमारी को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है? जांच की प्रक्रिया क्या होती है?
1: जी हाँ, इसका जांच के लिए बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसे हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं या फिर HPLC कहते हैं और एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। अगर सही समय पर जांच हो जाए और सही समय पर जांच होने से हमें बीमारी पहले पता चल जाती है और इसके बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। सही समय पर जांच करने से पता चलने के बाद हम इसकी दवाइयां चालू कर सकते हैं जिससे सिकल सेल के लक्षणों को काफी हद तक हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, इसीलिए जल्दी जांच कराना चाहिए।
0: जी सर, एक सवाल ये है कि हमारे देश और विशेष रूप से मध्य भारत में इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है?
1: हमारे देश में और विशेषतः कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, यहाँ पे सिकल सेल काफी प्रिवेलेंट है, मतलब इसकी प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा है। तो और इसको हम पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यह एक अनुवांशिक रोग है। अगर मैरिज के समय या प्रेगनेंसी के समय माता और पिता का जांच कर लिया जाए कि उनको सिकल कैरियर तो नहीं है, तो उससे हम आने वाली पीढ़ी में इसको होने से रोक सकते हैं, इसलिए इसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: जी सर, अगर परिवार में किसी सदस्य को सिकल सेल है तो दूसरे लोगों को क्या सावधानी या जांच करा लेनी चाहिए?
1: जी जैसा कि मैंने बताया ये अनुवांशिक रोग है, तो अगर किसी भी फैमिली में अगर किसी एक मेंबर को सिकल सेल है तो उसके सभी मेंबर्स को जांच कराना चाहिए। सपोज एक किसी बच्चे को सिकल सेल डायग्नोस हुआ है और उसके दो या तीन भाई या बहन है, तो जो मरीज है उसके सिबलिंग्स को, भाई बहन को जांच कराना चाहिए और साथ में माता पिता को भी जांच कराना चाहिए, क्योंकि संभावना है कि एक बच्चे को सिकल सेल हुआ है तो दूसरे बच्चे को भी सिकल सेल हुआ हो, ये हमको केवल जांच से ही पता चल सकता है। इसलिए एक मेंबर को डायग्नोस हुआ है तो बाकी मेंबर्स को भी जांच जरूर कराना चाहिए।
0: जी सर, क्या सिकल सेल के साथ सामान्य जीवन जिया जा सकता है? ऐसे लोगों के लिए रोजमर्रा की कौन सी आदतें मददगार होती हैं?
1: जी, सिकल सेल आजकल आधुनिक दवाइयों की वजह से काफी हद तक हम उनके लक्षणों को कंट्रोल कर लेते हैं और अगर मरीज जो है डॉक्टर की सलाह पे नियमित रूप से अपने जांच कराता है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयां रेगुलर लेता है तो वो आराम से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। और रोजमर्रा में इसमें हम यही सलाह देते हैं कि पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होने से मरीज का सिकलिंग परसेंटेज बढ़ता है, इसलिए मरीज को पानी की पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ऊंचाई वाले जगह में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाने से हाइपोक्सिया की वजह से सिकलिंग बढ़ता है, सिकलिंग का क्राइसिस हो सकता है। तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, ऊंचाई वाले जगह पे नहीं जाना चाहिए। तनाव से भी किसी किसी मरीज में सिकल सेल का क्राइसिस होता है, तो तनाव कम से कम लेना चाहिए, और डॉक्टर की जो भी सलाह है वो हमको लेना चाहिए, मानना चाहिए।

0: दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य और भारतीय कला जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले पंडित रामलाल बरेठ को संगीत नाटक एकेडमी की सर्वोच्च फेलोशिप एकेडमी रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान केवल एक कलाकार की उपलब्धि नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की उस सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान है जिसने वर्षों से कथक की एक अनूठी शैली को जीवंत बनाए रखा है। खास बात यह है कि पंडित रामलाल बरेठ को रायगढ़ कथक घराने के एकमात्र जीवित दरबारी नर्तक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने राजा चक्रधर सिंह की सांस्कृतिक दृष्टि और कलात्मक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चलिए उनकी इस उपलब्धि और उनके सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: पंडित जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में। पंडित जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, इस पुरस्कार की घोषणा हुई आपके लिए, और आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत नाटक एकेडमी की सर्वोच्च फेलोशिप अकादमी रत्न से सम्मानित होने की खबर जब आपको मिली तो उस समय आपके मन में सबसे पहला भाव क्या था?
2: वैसे तो बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं मेरे को, धीरे धीरे अभ्यस्त भी हो गया भाई, लेकिन ये इतना बड़ा सम्मान है ना अकादमी का
1: जी,
2: इसमें ये तो मेरा मन बहुत अच्छी पसंद हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार में सभी खुशी है, मेरे मिलने जुलने वाले दोस्त प्यार जितने हैं सब कलाकार लोग सब बहुत पसंद है, अब बोल भी रहे थे अपने ओर से कि ये सम्मान तो आपको बहुत पहले मिल जा रहा था, लेकिन जब भी मिला अच्छा मिला, और हम लोग सब आपको बधाई देते हैं, सब लोग मेरे बधाई दिए
1: जी। सर, इस सम्मान को आप अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में देखते हैं या रायगढ़ घराने और छत्तीसगढ़ की संस्कृति विरासत के सम्मान के रूप में?
2: बचपन से ही मैं रायगढ़ दरबार में, मेरे पिताजी तो देश के सर्वश्रेष्ठ दर्शक रहे हैं ना रायगढ़ के घराने के
1: जी,
2: जो जयपुर लखनऊ सब गुरुओं से सीखे थे, रायगढ़ के अपना अलग शैली बना, रायगढ़ में नृत्य के लिए अलग से मतलब शास्त्र बने, बृहस्पति पुष्पाकर राग रत्न मंजूषा और आपका नर्तन सर्वसम, उसके आधार से रायगढ़ का जो है ना बंदिशों का प्रत्येक बंदिश का नाम हुआ, रायगढ़ के जितने बंदिशों का है वो अपना काव्यात्मक संज्ञात्मक चित्रात्मक के रूप में उसका नाम रखा गया, हजारों बंदिश सब बंदिश जो किसी घराने में नहीं होता है सब बंदिश का नाम, और प्रकृति की चीजों पर भी होता है, प्रकृति की चित्रावली मतलब कोई चित्र के रूप में ठोकुई विषय को लेकर के उसमें भी बंदिशें हुई, जिसके कारण से रायगढ़ को एक स्थान मिला, और रायगढ़ के बारे में 1978 में भी फेलोशिप मिला था हमारे पिताजी को।
1: एक सवाल मेरा ये है कि कथक के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कथक केवल नृत्य नहीं बल्कि अभिव्यक्ति और साधना भी माना जाता है, आपके लिए कथक का क्या अर्थ है?
2: ये तो साधना का विषय है, साधना का विषय है, और कथक का जो सही ज्ञान है गुरु शिष्य परंपरा में होता है, और शिक्षा उसमें क्या है अधिक समय तक उनका अभ्यास, ब्याज अंग प्रत्यंग का बोल बंदिश का अभ्यास, उनका शरीर का दमकस जो है जैसा दौड़ता है आदमी धीरे धीरे अपना दमकस बढ़ाता है, फिर 5-1000-1500 वह फिर दौड़ता है जब मैंने गज दौड़ता है, इस प्रकार से इसका धीरे धीरे अभ्यास से दमकस बढ़ता है। राजा के दरबार में क्या था कि खिलाई पिलाई राजा से मिला हमारे पिता वगैरह, तो उसके द्वारा क्या था अनेकों गुरु थे साजिंदे थे, 3-3-4-4 साजिंदे उनके रियाज में बैठते थे, जब पैर का काम होता था तो घंटों पैर का काम होता था, तबले का बात है लव लय लड़ी है बोल बंदिश जब चले तो 50वां बंदिश को करने के बाद में उनको फिर पैर का काम दिखाते थे, भाव अभिनय का काम था राजा के रचना पर ठुमरी गीत गजल वगैरह पर उस पर भी भाव करता था, तो प्रदर्शन भी ऐसा होता था कि जिसका जवाब भी सारे देश के विद्वान लोगों को माने सभी घराने के लोग उनको विशेष रूप से उनको इज्जत देते थे
1: जी,
2: और ये तो गुरु शिष्य परंपरा विद्यालय शिक्षा जो है ऊपरी ज्ञान होता है, और ये साधना का विषय है, साधना जब तक सही नहीं होगा तब तक अंग प्रत्यंग उपांग अभिनय भाव का इसका रूप दिखता नहीं है लोगों को
1: जी।
2: तो ये साधना के बल पर जो है कथक नृत्य आधारित है, और समाज का जो समय है बदला है, ये जो राजा से मिला रही है विद्यालय शिक्षा हो रही है यूनिवर्सिटी है कहीं विद्यालय है, तो अब क्या है थोड़ा ज्ञान, लेकिन रियाज करने का इतना समय लोगों के पास कहाँ है, फिर आर्थिक स्थिति जो जिनके लिए लोग जो है ना उसमें जूझ रहे हैं। अब दरबार में क्या था, ये सिर्फ मतलब आप लिप्त ही कर रहा है दरबारों, और राजा का पूरा मतलब खाने पीने रहने बसने गुरु का शिक्षा ये तबला बाजा गाना बजाना सारे चीज का वहाँ पर साधन रहता था। मैं भी भोपाल में गया चक्रधर नृत्य में, हमको बच्चों को तैयार किया, घंटों सत्कार हो रहा है, घंटों छात्र छुट्टी के सब बच्चे थे, पाँच पाँच बच्चे दिया जाता था
1: जी।
2: चार साल के लिए, चार साल में देश के अच्छे अच्छे कलाकार को निर्माण करके देश के अनेकों जगह नचवाता था। उसके अलावा जयपुर लखनऊ जिलों की भी बंदिशों को, रायगढ़ के बंदिश को हमने दिखाया लोगों को, विद्वानों को सब देखे
1: जी।
2: मैं जयपुर कथक केंद्र भी परीक्षक था, जयपुर जहाँ गुरु शिष्य परंपरा शिक्षा होती है, कथक केंद्र भी परीक्षक रहा हूँ कई वर्षों से, रहा जहाँ बिरजू महाराज के क्लास के बच्चों का भी, जयपुर घराने के जो गुरु थे उनके भी क्लास के बच्चों का परीक्षा लेने जाता था, देखता था, फिर हमारा प्रदर्शन वहाँ देखते थे, देश के विद्वान सब तारीफ करते थे और हमारा संस्था बड़ा सुचारू चला। लेकिन एक दुख की बात होती थी, आर्थिक स्थिति कारण से हमारे संगत कार नहीं रह पाते थे
1: जी।
2: जो मैं तैयार करता था बोल पंच, जब तक रियाज नहीं होगा, रियाज नहीं होगा तब तक तबला बजा नहीं सकता ना कथक में, पंचों का नाच है। तो बहुत सारे तकलीफ करके इस प्रकार से साधना हमने किया, और रायगढ़ को सामने क्योंकि राजा महाराजा चक्रधर जी हमको 7 साल की उम्र से अपने पास रख लिए और शिक्षा देना शुरू किया। सबसे प्रथम शिक्षा हमारे पिताजी से हुआ, बीएसपी में उनका स्कूल में शिक्षा, तबला मास्टर थे, मेरे को लेके जाते थे डॉक्टर पाटन के यहाँ, डॉक्टर पांडे थे रायपुर में भी, कमला देवी कला मंदिर में, जगह जगह मैं नाचता था। इसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का रूपरेखा बना खैरागर का, धीरे धीरे बच्चे, लेकिन यूनिवर्सिटी शिक्षा हम लोग की शिक्षा में 3 रात की अंतर है
1: जी। पंडित जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस नए पुरस्कार के लिए।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका मेरे से जानकारी लिया, मैं जो कि बनना जो सच्ची बात है कहानी मैंने आपको बताया है
1: जी।
2: धन्यवाद आपका।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

0: साथियों, आज के समय में काम का तरीका बदल रहा है। लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना, लगातार मीटिंग्स, समय का दबाव और मानसिक थकान, ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने का एक सरल तरीका बनकर सामने आता है। कार्यस्थल पर योग का मतलब हमेशा कठिन आसनों से नहीं होता। कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग, सही बैठने की आदत, गहरी सांसें और छोटे छोटे माइंडफुल ब्रेक भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज हम समझेंगे कि ऑफिस या कार्यस्थल पर योग क्यों जरूरी है, इसे रोजमर्रा की दिनचर्या में कैसे शामिल किया जा सकता है और क्या कुछ मिनट का योग वास्तव में उत्पादकता और मानसिक संतुलन पर असर डाल सकता है। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं योग गुरु डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी।
1: राधिका जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी रायपुर के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: जी धन्यवाद।
1: मैडम, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि कार्यस्थल पर योग का मतलब क्या होता है और क्या यह सामान्य योग से अलग होता है?
2: कार्यस्थल पर योग का अर्थ है एक ऐसा योग का पैकेज या योगाभ्यास का पैकेज जिसे कार्यालय के वातावरण और समय के अनुसार सरल बनाया जाता है। हम सीधे कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को स्वस्थ, ऊर्जावान और तनाव मुक्त

0: रखने का उद्देश्य होता है।
1: जी मैडम, आज की ऑफिस लाइफ और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत शरीर पर क्या असर डालती है?
0: लंबे समय तक बैठने से गर्दन दर्द, पीठ दर्द और कमर दर्द और आज के समय पर मोटापा, थकान और ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर ना होना और सबसे बड़ी समस्या जो दिखाई देती है वो मानसिक तनाव की दिखाई देती है। और लंबे समय तक बैठे रहने से, स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है।
1: जी मैडम, एक सवाल ये है कि क्या दिन में सिर्फ 5-10 मिनट का योग या स्ट्रेचिंग भी फर्क ला सकता है?
0: जी जरूर, प्रतिदिन 5-10 मिनट का योग शरीर में लचीलापन लाता है, ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने में सहयोग करता है और साथ ही मानसिक तनाव को कम करने में भी बहुत प्रभावी होता है।
1: जी ऐसे कौन से आसन, योग अभ्यास या श्वास तकनीक हैं जिन्हें लोग अपनी सीट पर बैठकर भी कर सकते हैं?
0: गर्दन घुमाना, आंखों का अभ्यास, आंखों को नीचे ऊपर दाएं बाएं घुमाना, आंखों को बंद करना, खोलना, इस तरह का अभ्यास और साथ ही कंधों का स्ट्रेचिंग करना, रीढ़ सीधी करके अपने सीट पर बैठना, बीच बीच में लंबे गहरी श्वास लेना और प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, जिसे अधिकतर सभी जानते हैं, इस तरह के आसान अभ्यासों को सीट पर किया जा सकता है।
1: जी क्या कार्यस्थल पर योग तनाव और मानसिक थकान कम करने में मदद करता है, और ऐसा है तो इसके पीछे क्या कारण है?
0: योगाभ्यास मन और शरीर को संतुलित करने का कार्य करता है।
1: जी
0: स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे शरीर में जो होते हैं उन्हें वो कम करता है और उसके कम होने से ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में एक थकान दूर होने वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है और मानसिक शांति और सकारात्मकता में वृद्धि होने लगती है।
1: जी मैडम, एक सवाल ये भी है कि क्या लगातार स्क्रीन देखने वालों के लिए गर्दन, पीठ और आंखों को आराम देने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, मतलब जैसे कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए?
0: जी सर, प्रतिदिन अपने इस वर्किंग आवर में 30-40 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लिया जा सकता है और जिसमें यदि वो ब्रेक के साथ योग निद्रा का अभ्यास अपने सीट पर बैठकर किया जा सकता है, जिसमें अपने शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, अपने आती हुई और जाती हुई श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, तो इस तरह छोटा एक 10-15 मिनट का पैकेज भी हो सकता है। आंखों के लिए थोड़ी देर आराम करने के लिए समय निकालना चाहिए, गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और बैठने की सबसे ज्यादा आवश्यकता यहाँ पर होती है, बैठने की सही मुद्रा अपनाना चाहिए।
1: जी मैडम, क्या कंपनियों और संस्थानों को नियमित वेलनेस या योग सत्र शुरू करने चाहिए, इससे क्या फायदे हो सकते हैं?
0: निश्चित रूप से, इससे उन सभी संस्थानों या कंपनियों के कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, उनकी अनुपस्थिति कम होगी, उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो कार्यस्थल का वातावरण है वो हमेशा हेल्दी और पॉजिटिव होगा।
1: जी मैडम, आखिरी सवाल है मेरा कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पास समय नहीं है, वे अपनी दिनचर्या में योग को कैसे जोड़ सकते हैं?
0: दिन की शुरुआत हमेशा 5 मिनट के योगाभ्यास से करें और उस उठते ही सबसे पहले अपने श्वासों को नियंत्रित करते हुए साथ ही लंबी गहरी श्वास लेकर के हल्के स्ट्रेचिंग के साथ वो उठ सकते हैं और कार्य के बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेकर श्वासों का अभ्यास और स्ट्रेचिंग के अभ्यास वो अपने दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। इस तरह से कम समय में भी यदि नियमितता रहती है तो उस छोटे से पैकेज का भी बड़ा इफेक्ट होगा।
1: जी मैडम, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और योग के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत, सुरक्षित भविष्य। एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत, सुरक्षित भविष्य।
4: तो साथियों, आज की सुबह रही उम्मीदों, विचारों और संवादों से भरी हुई। आज के दिन को याद रखिए, कुछ नया जानिए, कुछ अच्छा सोचिए और किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, अब आज की इस यात्रा को एक मधुर गीत के साथ विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मनूचा हो और आपके कामों में प्रेरणा बनी रहे। अपने रेडियो साथी अंकुर शुक्ल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
6: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
6: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
5: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए

0: रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

0: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
3: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, जब हम मनोरंजन के माध्यमों की बात करते हैं तो फिल्में हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो माध्यम है जिसने वर्षों से भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। हिंदी सिनेमा से लेकर प्रांतीय सिनेमा तक अनेक फिल्में बनी हैं। श्वेत श्याम से लेकर रंगीन फिल्मों के इस दौर में हमारे फिल्म उद्योग से जुड़े अनेक कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने फिल्म के लेखन, निर्देशन और निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और जब हम छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात करते हैं तो सन 60 के दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में भी सिनेमा का एक दौर शुरू हुआ था, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का। और उस दौर में पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी थी कही देवे संदेश, और आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक जी को। नायक जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद इनवाइट करने के लिए।
0: नायक जी, आपके नाम को लेते ही समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म कही देवे संदेश की याद आती है
1: जी।
0: आप चूंकि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं तो सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही।
1: रायपुर जिले का ही एक ग्राम है कुर्रा बंगोली, यहाँ से 30 किलोमीटर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और प्राइमरी स्कूल की शिक्षा मेरे को उसी गाँव से मिली। उसके बाद राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर से हाई स्कूल का एजुकेशन।
0: उसके बाद आप ये फिल्म वाले क्षेत्र में कैसे आए, आपके मन में कौन सी बात आई?
1: मैं हमेशा देखता था कि हमारे गांव के लड़के जो हमारे साथ पढ़ रहे थे उनके गार्जियन मिलने आते थे गांव से, किसान, तो उनके साथ वार्तालाप करते थे, तो गांव वाला तो छत्तीसगढ़ी में बात करता था लेकिन उनका लड़का जो है हिंदी में बात करता था, तो मुझे बड़ा इंसल्टिंग लगता था कि अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना। इसी तरह से छुआछूत के बारे में मेरा दोस्त था एक श्याम रतन करके, वो घर में आता है मिलने मेरे से और मेरे साथ बैठता था बाहर आंगन में, तो वो जब जाता था तो वहाँ मेरी माँ लिपवा देती थी गोबर से, तो इतने हैट्रेट था एक छुआछूत के बारे में जो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे स्कूल में राष्ट्रीय विद्यालय स्कूल नामी राष्ट्रीय विद्यालय था, वहाँ सब देश के एक से एक नेता, बड़े बड़े नेता आके वहाँ भाषण देते थे, सब समानता की बात करते थे लेकिन हकीकत में वस्तु स्थिति अलग थी। ये सब चीज़ें मेरे अंदर में थी, तो शुरू से सोच लिया मैंने कि मैं फिल्म अगर बनाऊंगा, क्योंकि फिल्म में रुझान मेरा ऐसा हुआ, वार्षिक प्रोग्राम जो होता था स्कूल का उसमें रामानंद कनौजे करके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट लिख के दिया।
0: कनौजे जी ने आपको सर्टिफिकेट लिख कर दिया, तो उसके बाद फिर ये जो पहली जो आपकी फिल्म थी कही देवे संदेश, इसकी कल्पना किस तरह से आपने की, और चूंकि इस फिल्म को आपने लिखा भी है तो इसके लेखन के वक्त कहानी कैसे सूझी आपको, क्या सोचा आपने कि किस कहानी पर फिल्म बनाई जाए?
1: मैं स्कूल के एजुकेशन के दिनों में रेलवे स्टेशन के पास नर्मदा कुंड है वहाँ रहता था, जो 2 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच सकते थे, तो रेलवे स्टेशन में व्हीलर का बुक स्टॉल था, वहाँ मुझे फ्री में सब पढ़ने को मिलता था। वहाँ देखा कि सिनेमा के मैगजीन बहुतेरे बिकते हैं, तो मैं भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगा और मेरी भी इच्छा भी जागृत होने लगी कि मैं भी सिनेमा बनाऊं, और अपने मन में ये बात रखी कि किसी को बोलूँ तो हंसेगा ना।
0: तो आपके मन में सिनेमा बनाने की बात आई, तो इसके लिए कहीं से कुछ सीखा आपने या किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कभी जुड़ने की कोशिश की ये फिल्म बनाने के पहले?
1: एक साहब थे, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है अभी, वो मुंबई आना जाना क्या करते थे, उनका काम दूसरा था लेकिन आते जाते थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई रायपुर में रेलवे स्टेशन में, एवरी टाइम आते जाते थे, तो मैं भी उधर स्कूल आवर्स के बाद रेलवे स्टेशन में बिताता था मैं भी, तो उनसे जब दोस्ताना हो गई तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी मुंबई देखना है, तो उन्होंने बराबर अपना एड्रेस दिया और बोलना आप जब चाहे आ जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ नहीं हूँगा तो बम्बई में ही रहता हूँ, तो MNT स्टूडियो था उसके अंदर उसका क्वार्टर था, तो वहाँ गए तो देखा कि सिनेमा वाले ही हैं सब। मोहन स्टूडियो सामने था जहाँ हम रुके थे, बस तो वहाँ देवदास की शूटिंग चल रही थी। तो उसी में देवदास के यूनिट का एक मेंबर मेरे पास आया, तेरे को हिंदी आती है ना अच्छी? तो मैं कहा आती तो है, अब अच्छी है कि नहीं ये नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि ये डायलॉग जो है ये आर्टिस्ट को रटाना है। मैं कहा ठीक है। तो वो दुलारी बाई थी, उसको रटाना था, लेकिन वो मैं खुद पहले परेशान था कि इस माहौल में मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। फिर वो सफल नहीं हो पाई, डायलॉग में रिटेक हो गया, तो फिर मुझे दो चार गालियां दी और भगा दिया मुझे। तो इतने में क्या था कि आसिफ साहब का फिल्म मुगल आजम, उसका जो मटेरियल था सेटिंग का, सब एग्जीबिशन के लिए था, वहाँ मैं लगा हुआ था। वहाँ पर मुझे एक महीने के लिए काम मिल गया। तो इस तरह सिनेमा लाइन के अंदर मैं घुस गया, समझ लीजिए।
0: तो इस तरह से आप सिनेमा लाइन में चले गए, और उसके बाद में फिर ये फिल्म कही देवे संदेश की कल्पना आपके दिमाग में आई, 1965 में ये फिल्म आपने बनाई थी
1: जी।
0: तो फिर वहाँ से फिर आप वापस रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और यहाँ आने के बाद फिर इस फिल्म की आपने प्लानिंग की?
1: यहाँ प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग तो मुंबई में ही की।
0: वहीं की आपने?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: यहाँ पर तो लोग फिल्म का नाम बोलो तो आपको जूता मारने के लिए तैयार होते थे लोग।
0: उस समय इस तरह की मानसिकता लोगों में नहीं थी कि फिल्म से जुड़ सके। तो फिर कही देवे संदेश के लिए आपने जब स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू की, इसकी कास्टिंग की, उसके बारे में कुछ बताइए। कास्टिंग के लिए कलाकार कहाँ मिले आप?
1: क्योंकि जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, महेश कौल और मुखराम शर्मा के ऑफिस में
0: जी,
1: उस जमाने पर शीर्ष में उनका नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनका चहेता एम्प्लॉय था। कौल साहब से मिलना है तो मेरे से पहले मिल के जाता था, तो कौल साहब मुलाकात करते थे। वहाँ फिर मुखराम शर्मा जी के कापी राइटर की तरह भी काम करता था, स्क्रिप्ट लिखते थे वो, उनको फेयर करना, उसको टाइप करवाना, ये सब काम मिल गया मुझे। तो उससे मैं समझने लगा कि स्क्रिप्ट क्या चीज़ होती है, और चूंकि शूटिंग में होता था कंपनी की, तो शूटिंग में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन कौन कितने इम्पोर्टेंट है, क्या है वो सब। उसके बाद एडिटिंग होती थी, तो एडिटिंग में भी जाके देखा करता था कि ये लोग एडिट कैसे करते हैं, क्या है। इस तरह से नॉलेज जो है सिर्फ फिल्म मेकिंग का, और सबसे बड़ा उसमें बिजनेस का हाथ होता था। तो NCCP जो है उस समय हमारे जनरल मैनेजर थे, और वो फिल्म लाइन के एक्सपर्ट थे फिल्म मेकिंग में, बिजनेस में। तो उनसे मैंने सीखा बिजनेस कैसा होता है सिनेमा का, कैसे रिलीज करते हैं फिल्म, कैसे सेल होता है, ये सब नॉलेज मेरे अंदर में धीरे धीरे बलवती होती गई, और मैं ये सोचने लगा कि अब मैं फिल्म बना लूँगा। अब रही गई पैसे की बात, तो मैंने आगे देखा न पीछे देखा, गाना रिकॉर्ड कर लिया रफ़ी साहब का।
0: अच्छा, कौन सा गाना था वो?
1: झमकत नदिया बहनी लागे पर्वत मोर मितान हवे, मैं बेटा हाँ वे धरती के, धरती मोर पर आन हवे।
0: ये गाना तो बड़ा सुंदर बन पड़ा था।
1: हाँ हाँ, बहुत पसंद आया था लोगों को।
0: तो श्रोताओं को ये गाना सुना भी दें?
1: हाँ बिल्कुल, सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं आपकी फिल्म कही देवे संदेश का

0: क्या बात है नायक जी, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में हमें सुनवाया और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर ये गीत आपने रिकॉर्ड करवाया, उसके बाद और कौन कौन से गीत रिकॉर्ड करवाया आपने?
1: तो उसके बाद पहली बात तो ये है कि मुझे मेरी कंपनी से नोटिस आ गया कि आप पागलपन कर रहे हो, पैसा कहाँ से ला के दोगे
0: जी,
1: कहीं से उधार लेके तुम गाना रिकॉर्ड किया होगे ऐसा वैसा। तो बोले कंपनी ने तय किया है कि जितना रिकॉर्डिंग का खर्चा है कंपनी देगी और तुम फिल्म मेकिंग छोड़ के कंपनी का काम करो, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो फिर नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी और भटकने लगा, समझो 58, 59, 60।
0: उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर था नायक साहब।
1: हाँ जी हाँ।
0: उसके बाद फिर आप भटकते भटकते कहाँ चले गए ये बताइए।
1: हाँ, भटकते भटकते घूम फिर के वहीं पहुँच जाता था जहाँ शुरू में जिनके वहाँ डेरा डाला था
0: जी।
1: फिर उन्होंने कहा कि कोई नौकरी पकड़ लो, तुम्हारा खर्चा कम से कम चले। फिर मैंने नौकरी वापस पकड़ ली कंपनी में।
0: फिर आप वापस नौकरी में आ गए, फिर ये कही देवे संदेश का क्या हुआ फिर?
1: फिर मैं काम करता रहा।
0: अच्छा,
1: कंपनी को बताए बगैर
0: काम करते रहे।
1: हाँ, गाना लिखवाना, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ शूटिंग करना
0: जी,
1: ये ऑफिस आवर्स के बाद में करने लगा।
0: तो कई देवे संदेश के गाने तो आपने हनुमंत नायडू जी से लिखवाए थे ना?
1: जी हाँ जी हाँ। हनुमंत नायडू साहब बहुत योग्य
0: जी
1: कवि थे, उनसे भी हमारी जान पहचान कुछ ऐसे समय हुआ कि उनको भी कुछ जरूरत थी, लोग उनको साथ दे।
0: और इसके संगीतकार कौन थे?
1: मलय चक्रवर्ती करके थे।
0: मलय चक्रवर्ती जी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, इनके बारे में हमारे श्रोता जानते नहीं है, कुछ बताइए कहाँ मिले ये आपको, कहाँ के थे?
1: मलय चक्रवर्ती साहब हमारी कंपनी के बाजू में दूसरा ऑफिस था
0: मुंबई में जी,
1: वहाँ उनकी फिल्म कर रहे थे तो उनका रिहर्सल वगैरह गाने का चलता था, तो हम मैं सुनता था, सुनाई देता था बाहर। तो वो लगता था कि कोई बहुत ही सुलझा हुआ आदमी है जो गीत ये लिख रहा है। तो फिर मैंने उनको बुला लिया एक दिन, मैं छत्तीसगढ़ी में ऐसा बनाना चाहता हूँ अब, लेकिन मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, आप कुछ ज़्यादा डिमांड वमांड करोगे तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो आप गाना रिकॉर्ड करवा लो, पैसे की बात छोड़ दो। तो एक तरह से हामी हो गई उधर से।
0: और उन्होंने छत्तीसगढ़ी गीत लिखा है तो वो मूलतः छत्तीसगढ़ के थे ना नायडू जी?
1: दुर्ग के थे
0: जी।
1: तो वो किसी से मेरा एड्रेस लेके मुंबई आए थे
0: जी,
1: फिर लाइफ लॉन्ग पार्टनर बन गए मेरे वो
0: जी।
1: उनसे जो भी लिखवाना होता था मैं फोन कर देता था और वो गीत का टेक्स्ट लेके आ जाते थे, फिर मलय चक्रवर्ती के पास पहुंच जाते थे और उनसे तुरंत के तुरंत ट्यून बना देते थे, वो उसमें मॉडिफिकेशन करना है वो कर लेते थे, लेकिन काम तुरंत करते थे।
0: आपकी फिल्म कही देवे संदेश में मोहम्मद रफ़ी जी ने भी गीत गाए थे और उस समय तो मोहम्मद रफ़ी जी बड़े लोकप्रिय गायकों में एक थे।
1: हाँ जी,
0: भारत के नामचीन गायकों में एक थे
1: ये।
0: तो उनको जब आपने इस फिल्म के बारे में बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में उन्हें पहली बार गाना है, तो रफ़ी साहब का क्या रिएक्शन था?
1: रफ़ी साहब रिहर्सल किए थे, एक दो रिहर्सल के बाद बोलने लगे कि ये गीत आप खुद क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेरे से क्यों करवा रहे हो, छत्तीसगढ़ी में आप गाओ और हो जाएगा। तो मैंने बताया कि फिर रिकॉर्ड कौन खरीदेगा,
0: अच्छा
1: आपका नाम है तो काम आसान हो जाता है।
0: जी जी जी।
1: कुछ बोला नहीं फिर उन्होंने, और उन्होंने बहुत ही कम दाम में गाना रिकॉर्ड किया हमारे साथ।
0: इसमें मोहम्मद रफ़ी जी का एक और हिट गीत था, तोर पैरी के झनर झनर।
1: हाँ जी हाँ।
0: उस गाने के बारे में कुछ बताइए, उस गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जब रफ़ी साहब आए तब उन्होंने किस तरह से लिरिक्स को देखा, समझा, आपसे कुछ समझने की भी कोशिश की होगी कि इन शब्दों का मतलब क्या है, आपने उनको बताया होगा?
1: हाँ, तो उसके बगैर तो होता ही नहीं ना
0: जी, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जी तो बड़े सहज सरल इंसान थे।
1: हाँ जी।
0: और पंजाबी उनकी मूल भाषा थी, उसके बावजूद वो अन्य भाषाओं के गीत भी गा लेते थे समझकर पूरी तरह से। तो छत्तीसगढ़ी को किस तरह से आपने समझाया उनको?
1: वो उनका क्या था, आप उनको टेप रिकॉर्डर में टेप करके दे दीजिए, वो घर में बैठ के सुनते थे।
0: अच्छा,
1: ऐसे गीतों को जहाँ उनको जरूरत है, भले एक बार सुन रहे हो घर में या दो बार या रिकॉर्डिंग में आने से पहले सुन रहे हो, लेकिन वो उनका रूटीन था।
0: अच्छा, रफ़ी साहब ने आपसे पूछा होगा ना भाई इसमें हीरो कौन है, किसके ऊपर ये पिक्चराइज किया जाएगा, कुछ पूछा उन्होंने?
1: नहीं नहीं, ये सब ट्रेड में हमारा है नहीं ना, वो लोग अपना अपना काम पे।
0: तो जब ये इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई, रफी साहब से आपने दो गाने रिकॉर्ड करवाए थे ना,
1: हाँ,
0: कही देवे संदेश के लिए,
1: हाँ जी,
0: दो गाने थे। तो इन दोनों गानों की रिकॉर्डिंग के बाद में जब इसके गाने फिल्म में दिखाई देने लगे, और उसके बाद इसकी ईपी भी निकली थी कही देवे संदेश की, ईपी भी थी इसकी,
1: हाँ
0: जी, तो ये गाने जब छत्तीसगढ़ में बजने लगे, यहाँ के लोगों ने जब सुना तो किस तरह का रिएक्शन था?
1: गाने के बारे में रिएक्शन तो सब अच्छा था
0: जी,
1: लेकिन लोगों की शिकायत ये थी कि ये छत्तीसगढ़ी गाने नहीं लगते करके।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये गाने सुंदर हैं, ट्यून भी सुंदर है, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं लगते, खाली आवाज छत्तीसगढ़ी हो नहीं, वो उसका कंटेंट भी छत्तीसगढ़ी लगना चाहिए।
0: और गायिका के तौर पर आपने किनको आमंत्रित किया था?
1: गायिका के तौर पर थी एक मीनू पुरुषोत्तम करके थी
0: जी,
1: जो बाद में अमेरिका चली गई, फिर आए नहीं लौट के वो।
0: उनसे कितने गाने गवाए थे आपने कही देवे?
1: उसने बिहनिया के उगत सूरज देवता, एक ये रिकॉर्ड करवाया था, और एक ददरिया था जो मेल सिंगर था, महेंद्र कपूर।
0: अच्छा, महेंद्र कपूर जी ने भी गाया था इसमें?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो महेंद्र कपूर और मीनू पुरुषोत्तम
0: जी,
1: तो ददरिया रिकॉर्ड किया था इन दोनों का। उसमें यही था, दो दिन के दुनिया वो दो दिन के रूप, ढली जाहि गोरी तोर जवानी की धूप।
0: क्या बात।
1: हाँ, तो इस तरह से था उसमें, लेकिन अभी तो याद नहीं है।
0: तो ये ददरिया सुना जाए?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो आइए सुनते हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर ददरिया आपने सुनवाया। और श्रोताओं, आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के लेखक, निर्माता और निर्देशक श्री मनु नायक। मनु नायक जी, कही देवे संदेश के गाने की रिकॉर्डिंग हो गई और उसके बाद इसकी शूटिंग भी पूरी हो गई, और इस तरह से इसकी जो शूटिंग थी उसके लिए आपने लोकेशंस का जो सिलेक्शन किया था वो किस तरह से था?
1: लोकेशन का हमने चयन किया था, वहाँ तो शूटिंग हुई नहीं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि जो लोग यहाँ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे वो यहाँ अवेलेबल ही नहीं थे। हम वापस यूनिट लेके यहाँ आए तो कोई हमारे को रिसीव करने वाला नहीं था।
0: और ये जो नायक नायिका और बाकी जो अभिनेता अभिनेत्रियां थीं, इनका सिलेक्शन किस तरह से किया था आपने?
1: वो चूंकि बताया ना कि स्टूडियो में रंजीत स्टूडियो सेंटर प्लेस था उस जमाने में
0: जी,
1: इसमें हरियाणवी छोटी छोटी फिल्में जो है, गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई वो, इस तरह की फिल्में, नेपाली फिल्में, सब का उद्गम स्थान था रंजीत स्टूडियो, और वही हमारा ऑफिस था। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग परिचित हो जाते थे, और उसके बाद कौन आर्टिस्ट आया वो मुलाकात भी होती थी उन फिल्मों में जो काम कर रहे थे। तो उसमें कान मोहन था, सिंधी का
0: कान मोहन जी,
1: वो हीरो था। अबाना करके सिंधी फिल्म थी, उसमें हीरो था
0: जी,
1: साधना हीरोइन थी। उसी तरह से सब आर्टिस्ट को सिनेमा में से देख के सेलेक्ट किया था।
0: नायक साहब, आपकी ये फिल्म जब कंप्लीट हो गई तब इसके रिलीज के लिए, मार्केटिंग के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपने करवाई छत्तीसगढ़ के लिए?
1: हमने बड़ी कोशिश की लेकिन लोगों ने यहाँ कोऑपरेट ही नहीं किया। मुझे तो विलन समझते थे लोग, इन्होंने धर्म को बिगाड़ दिया है। तो ये ऐसे में यहाँ कहाँ बिजनेस हो सकता था। पिक्चर रिलीज किया और थोड़ा बहुत कलेक्शन भी आया, लेकिन जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए वो था नहीं।
0: फिर 1965 में कही देवे संदेश के रिलीज के बाद फिर आपका अगला कदम क्या था?
1: अगला कदम इंतजार करना कि सबको पैसे उधार जो लिए हैं सबको छूटना।
0: अच्छा, तो इसमें कमाई आपको उतनी हुई थी कि नहीं कही देवे
1: संदेश? नहीं नहीं।
0: फिर कैसे, किस तरह से पेमेंट आपने सबका किया?
1: बिजनेस से किया।
0: अच्छा,
1: बिजनेस धीरे धीरे करके किया। गवर्नमेंट ने खरीदा था, 72,000 एक साथ मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, दूरदर्शन में दिखाया था। तो और भोपाल अनंत मराल शास्त्री करके थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने खरीदी थी डिपार्टमेंट के लिए, फ्री में दिखाते हैं ना सो
0: जी,
1: उसके लिए एक पेटी खरीदी थी उन्होंने। कलकत्ता दूरदर्शन ने दिखाया था, उधर से पैसे आया बड़ी रकम, और बाकी बिजनेस से छोटा मोटा।
0: फिर कही देवे संदेश के बाद में आपका अगला सपना क्या था?
1: अगला सपना, मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी पठौनी करके, फिल्म का नाम भी रखा था
0: छत्तीसगढ़ी में जी,
1: लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे ही अड़चन फिर आने लग गई। लोग आज बात करके जाते थे, दूसरे दिन मुकर जाते थे।
0: नायक साहब, चूंकि शुरू से ही आप हिंदी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और हिंदी फिल्मों से जुड़े रहते हुए आपने छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश का निर्माण किया, और उसके बाद फिर हिंदी फिल्मों का आपका जो सफ़र है वो जारी रहा, तो उसके बाद की जो हिंदी फिल्में रही हैं उनमें से कोई एक ऐसी फिल्म आप जिक्र करेंगे जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, जो आपको याद हो, कोई नाम बताना चाहेंगे आप?
1: जिंदा दिल,
0: उसमें ऋषि कपूर जी से आपकी जब मुलाकात हुई होगी तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लगे वो आपको?
1: ऋषि कपूर बहुत अच्छा थे, नायक अंकल करके बोला करते थे मुझे।
0: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि उनके पिताजी की फिल्म थी दीवाना
0: जी,
1: दीवाना हमारी कंपनी ने बनाया था तो कौल साहब की, तो उस समय राज कपूर जी से भी मुलाकात शूटिंग में होती थी।
0: हाँ,
1: तो उस हिसाब से दिवाली मिठाई उठाई लेके लेना देना ये सब चलता था। तो उस छोटा था ऋषि कपूर, नायक अंकल बोला करता था मुझे।
0: अच्छा अच्छा, ये जिंदा दिल के पहले आपने दीवान कपूर जी की एक फिल्म की थी आज की धारा, आज की धारा के बारे में कुछ याद है आपको?
1: नहीं, याद नहीं आ रहा
0: नहीं है। और एक फिल्म थी बिन बाप का बेटा।
1: हाँ, बिन बाप का बेटा भी रह गई।
0: अच्छा, ये बाबा साहेब सारंग जी की ये फिल्म थी।
1: हाँ हाँ,
0: ये फिल्म बाद में फ्लोर पे नहीं आई क्या?
1: नहीं आई।
0: अच्छा, एक कस्तूरी फिल्म भी आपने की थी जिसको कि नेशनल अवार्ड मिला हुआ था।
1: हाँ,
0: ये बिमल दत्त जी की फिल्म।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: इसके बारे में कुछ याद है आपको?
1: याद है।
0: बताइए कस्तूरी में कौन थे? कस्तूरी
1: में आगा साहब थे
0: जी,
1: मिथुन चक्रवर्ती।
0: अच्छा, आपने एक सिंधी फिल्म भी की थी।
1: हाँ,
0: सिंधी में। वो फिल्म कैसी थी बताएंगे कुछ उसके बारे में?
1: सिंधी फिल्म बहुत अच्छी थी, मदन जुमानी करके थे।
0: अच्छा,
1: जो डायरेक्टर थे उसके, बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर थे। खुद उन्होंने रोल किया था और सतराम रोहरा ने बनाई थी
0: जी,
1: जो हमारे अच्छे मित्र थे।
0: और एक जीते हैं शान से,
1: हाँ,
0: इस फिल्म में भी आपने अपना योगदान दिया था। पी सुब्बा राव जी की फिल्म थी जीते हैं शान से।
1: हाँ हाँ।
0: तो नायक साहब, इस तरह से हिंदी फिल्मों का भी आपका एक लंबा सफर रहा है
1: जी।
0: अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में अभी कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरी पत्नी तो रही नहीं, और मेरा दो पुत्र हैं, दोनों कामकाज में लगे हुए हैं, इंजीनियर हैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक, और मेरे भाई का परिवार है।
0: तो अभी आप रहते कहाँ पर हैं? छत्तीसगढ़ में हैं या फिर महाराष्ट्र में?
1: महाराष्ट्र में।
0: मुंबई में रहते हैं?
1: मुंबई में।
0: अच्छा,
1: और तो लड़के दोनों वहीं रहते हैं ना?
0: आपके साथ में ही है।
1: हाँ।
0: जी, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके फिल्मों के दौर की जो सुनहरी यादें हैं, उन यादों के साथ इस वक्त आपके जीवन का ये जो समय है, उन यादों के संग बीत रहा है। और अभी आपकी उम्र कितनी होगी, हमारे श्रोताओं के जानकारी के लिए बताएंगे आप?
1: 1937 का है।
0: 1937 का आपका जन्म है, तो इस तरह से आप 88 साल के आसपास के हैं।
1: हाँ जी
0: जी जी। तो मनु नायक जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप स्वस्थ रहें और अपने फिल्मों के योगदान के उस दौर में, जिन फिल्मों का आपने निर्माण किया, निर्देशन किया, लिखा, और जिन फिल्मों के प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर आपने फिल्मों में अपना योगदान दिया, उनकी यादें सदैव आपके मानस पटल पर जिंदा रहें, और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इनसे मिलिए कि इस अंग से दीपक हटवार को अनुमति दीजिए।

0: दुनिया ला नारी सम्मान के संदेश सदा सदा ले हमर देश ले मिलत आए हे। बेटी के आगमन ला लक्ष्मी के आगमन समझ अपन जीवन के सबले बड़े सौभाग्य माने के परंपरा आदिकाल ले हमर संस्कृति मा रही साबे। जीवन के जम्मो सुख दुख पूजा पाठ संस्कार काम कारज में पति पत्नी के साथ ला अनिवार्य माने जाए। बेटी बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य के प्रतीक होवे। फिर समय के चक्र के परिवर्तन ऐसे होइस कि हमर संस्कृति मा हमर राष्ट्र मा विदेशी आक्रांता मन के आगमन होइस और देश के संगे संग यहाँ के संस्कृति और संस्कार मा हमला हो के शुरुआत होइस। नारीला उपभोग के वस्तु समझिया शासक मन नारी के अस्तित्व के साथ ऐसे खिलवाड़ करीन कि आधी आबादी के साथ अस्तित्व के संकट सामने आ गए। लगातार सैकड़ों बरस के अत्याचार और अनादर ले बेटी मन के सुरक्षा की चिंता माता पिता और परिवार के ऊपर आ गए। जेखर ले सुरक्षा ला ध्यान में राखत बेटी मन ला घर के चार दीवारी मा कैद करके राखे मा मजबूर हो गए। एखर परिणाम स्वरूप बेटी मन के शैक्षणिक सामाजिक और आर्थिक रूप ले पिछड़े के सिलसिला शुरू होइस। एखर संगे संग समाज मा और कई प्रकार के कुरूति पनपे ला धरली जैसन की दहेज बेटी मन ला बोझ समझना बाढ़े ला धरलीस और सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवाद कि बेटा तो कुल लतार ही दाई दादा के ला कांधा दी अर्पण तर्पण कर ही ये जम्मो धारणा बेटी मन ला और निम्नता की ओर ढकेल दीस। बेटा के चाहत में बेटी ला संसार में आए के पहले ही दाई के गर्भ में ही मार दे जाते और यदि कैसनों करके दुनिया में आ भी गए तो जन्म ले मृत्यु तक भेदभावपूर्ण जीवन चाहे ओकर पोषण हो चाहे शिक्षा हो चाहे पैतृक संपत्ति में अधिकार हो हमेशा बेटी मल्ला अधिकार ले वंचित रखे जाते जेखर ले ओकर अस्तित्व ही खतरा में पड़ जावा थे। 1961 के जनगणना में ये बात सामने आई कि भारत में स्त्री और पुरुष के लिंग अनुपात में भारी गिरावट देखे बर मिली और ये 6-7 दशक में एमा कोनो प्रकार ले सुधार देखे बर नहीं मिलीस जो न सिर्फ सरकार बर बल्कि समाज बर भी चिंता के विषय है। यही बात ला ध्यान में राखत सरकार मन समय समय मा बेटी मन की सुरक्षा और विकास बर तमाम प्रकार के प्रयास करीन फिर आशातीत सफलता देखे बर नहीं मिलीस। यही चिंता सरकार ला एक बार फिर सोचे बर मजबूर करीन कि कैसे ढंग ले बेटी मन के अस्तित्व ला संकट से उबारा जाए। एखर वजह ले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है 22 जनवरी 2015 ले हरियाणा के पानीपत ले एक महत्वाकांक्षी योजना के शुरुआत करीन और नाम दीन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त अभियान आए। ये योजना का होते एकर का उद्देश्य है एकर कैसे क्रियान्वयन होते एकर का परिणाम देखे बर मिलत है यही सब बात ला विस्तार ले जाने बर कार्यक्रम नवा अभियान में आज आमंत्रित है महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के उप संचालक श्रीमती ममता भगत जी। इखर ले ये योजना के संबंध में विस्तार ले जानबो। ममता जी आपके ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आप सब मल्ला जोहार।
0: ममता जी सबसे पहले हम ये जानना चाहबो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का है एकर शुरुआत कब ले हुई।
1: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के ऐसा योजना है जेकर मुख्य उद्देश्य नोनी मन ला बचाना ओमन के सुरक्षा सुनिश्चित करना और ओमन ला पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। काय के बेटी मन हा भविष्य है ये समाज ला गढ़ी त देश और राज्य ला भी विकसित बनाही। योजना समाज में नोनी के प्रति सोच ला बदले बर और ओमन ला बराबरी के अधिकार दे बर शुरू के गए है। जैसे कि आप मन ला पता है कि ये योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से 22 जनवरी 2015 में हो है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में शुरुआत हो है।
0: बहुत अच्छा बात बताया आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य का है थोड़ा विस्तार ले बताते हो।
1: बेटी

0: बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है, इसमें मुख्य रूप से तीन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हो है, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। महिला बाल विकास मंत्रालय शुरू से ही नोनी मन के स्वास्थ्य पोषण ओकर सुरक्षा ले पहले से काम करत है। इसमें एक चीज और जुड़ गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में सबों मन के जानकारी हो कि ओकर भ्रूण हत्या ला रोकना है, ओकर सुरक्षा सुनिश्चित करना है और शिक्षा में ओकर भागीदारी ला भी बढ़ाना है। इसमें सबो जनता ला जागरूक करना, ओकर जागरूकता अभियान चलाए के कार्यक्रम किए जाते हैं।
1: जैसे कि आप पहले भी बताओ कि ये योजना के क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग और अन्य जो मंत्रालय है ओकर संयुक्त तत्वाधान में होते हैं, तो ये योजना के क्रियान्वयन पर किस प्रकार के कार्य योजना बने हैं इला थोड़ा विस्तार ले बताते हो।
0: महिला बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन पर नोडल विभाग है। मुख्य रूप से नोनी के देख रेख, ओकर सुरक्षा और ओकर बाल विवाह जैसे कुप्रथा ला रोके बर समाज में जागरूकता फैलाए के काम करते। एकर अलावा महिला बाल विकास में आंगनवाड़ी के कार्यक्रम भी चलते, जिमें 6 माह से 6 वर्ष तक के नोनी मन हा पोषण ओकर देख रेख होते। एकर अलावा 6 वर्ष के ओकर बाद में नोनी मन हा जब स्कूल जाते ओकर स्कूल जाए के सुरक्षा ला सुनिश्चित करे बर जागरूकता कार्यक्रम चलाते। महिला बाल विकास विभाग में ऐसे नोनी जेकर कोनो नहीं है, जेकर परिवार नहीं है, उमन के देख रेख सुरक्षा भर संस्था है, बालिका गृह है, और उमें ओकर सब शिक्षा के अधिकार भी तहत स्कूल जाते, पोषण के देख रेख भर भोजन मिलते। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से बालिकाओं के लिंग जाँच, जो जन्म के समय लिंग जांच होने के कारण ओकर कमी आ है, तेरे स्थिति ये योजना चालू हुए है, क्योंकि लिंगानुपात पूरे देश में बहुत कम होते, गिरत जाते 1000 पुरुष के पीछे बाल नोनी मन के संख्या कम होते। ओकर जांच के रोके बर कड़ाई से PCPNDT एक्ट एक है, जिमें भ्रूण जांच करना मना है और जे एकर उल्लंघन करते ओकर बर कड़ाई कार्रवाई करते। ऐसे अस्पताल और डॉक्टर जो एक काम के भागीदारी होते ओमन के लाइसेंस ला रद्द किया जाते। शिक्षा विभाग से समन्वय करके ऐसे बालिका जो स्कूल जाए बर छोड़ दे है कोनो कारण से, चाहे वो परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर हो या जो भी कारण हो, नोनी मल्ला स्कूल में दाखिला करवाए बर ओकर सुरक्षा बर व्यवस्था करे बर प्रचार प्रसार किए जाते, ताकि बालिका मन स्कूल में अधिक से अधिक दाखिला ले सके। इसमें जिला और राज्य स्तर पर कलेक्टर और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं योजना क्रियान्वयन के मुख्य कड़ी आए।
1: ममता जी, एक बात समाज ला शर्मसार करते वो हरे कि बेटी मल्ला ये दुनिया में आए के पहली माँ के गर्भ में ही मार देना, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्या भ्रूण हत्या ला रोके बर और गर्भस्थ शिशु के लिंग जांच ला अपराध माने गए है हमारे संविधान में, तो ये उद्देश्य ला पाए बर और कौन कौन से ढंग से कार्य किए जाते हैं और एकर लिए किस प्रकार के कार्य योजना कार्य करते हैं, कतिक सफलता मिले में।
0: हमर विभाग महिला बाल विकास आंगनवाड़ी स्तर जो कि सभी महतारी और संगवारी मन से जुड़े है, मैदानी अमलों में जे हमर अधिकारी मन है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका है, ए मन हा नोनी मन से सीधे जुड़े है और उमन ले हमर विभाग के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के संदेश ला बताते। 2022 से मिशन शक्ति चालू हुए। मिशन शक्ति भारत सरकार के अम्ब्रेला योजना है, इसमें हर जिला और राज्य स्तर में हब की स्थापना की गई। हब में हमर स्थापना 8 कर्मचारी है, एमन हा जगह जगह गांव गांव स्कूलों सभी विभाग के कार्यालयों में जाके प्रचार प्रसार करते। इकर अलावा रेडियो टीवी गांव गांव में नाटक आदि के माध्यम से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये संदेश ला पहुँचाते। हमर विभाग के सबो 33 जिला में हब की स्थापना की गई है। ये मैं बतावा चाहता हूँ कि जब योजना शुरू हुई से हमर राज्य के केवल रायगढ़ जिला में पायलट आधार पर ये योजना चलत रही से, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ओकर महत्व ला देखते हुए सबो जिला में यह 2022 से स्थापित हो है, ताकि यह आम जनता ले जागरूक करे कि बेटी कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग में समन्वय करके सभी ऐसे

0: क्लिनिक अस्पताल जहाँ संभावना है कि भ्रूण जांच हो सके, लिंग जांच की संभावना है, वहाँ ये संदेश पहुँचा जाता है कि अगर ये करे, लिंग जांच करे, गर्भ में शिशु की लिंग का पता करे, तो उन डॉक्टरों और अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में ऐसे परिवार जो इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होंगे उनको भी समझाइश या कार्रवाई की जाएगी। उमन के लाइसेंस भी रद्द हो सके थे। नोनी मन है स्कूल जाते उमन ला प्रोत्साहित करे बर उमन ला कॉपी किताब ये सब भी सामान दिलाए जाते ताकि वो अधिक से अधिक स्कूल लाभ दे सके।
1: ममता जी एक बात देखे पर मिलते कि कैसनो करके बेटी जब ये दुनिया में आ जाते तो उकर सुरक्षा और उकर पालन पोषण खासकर हमारे अभी भी परिवार मन में बहुत सारे परिवार में देखे पर मिलते कि बेटा मन खाही सार सार और बेटी पर बचे खुचे। तो बेटी मन के कबर नारी जो होते या बेटी जो होते आगे चल के एक नया राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी उकर ऊपर होते तो उकर पोषण बहुत मजबूती के साथ होना चाहिए। तो जन्म के बाद सबले ज़्यादा भेदभाव समाज में जो दिखते कि बेटी मन के पालन पोषण खान पान तो ये योजना में लड़की मन के पालन पोषण के का व्यवस्था करे गए है, किस तरह से मतलब पोषण आहार वगैरह के सुविधा दे जाते हैं।
0: भारत सरकार के योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना राज्य में संचालित हुआ थे। बालिका के जन्म स्वस्थ हो सुनिश्चित हो एकर स्थिति गर्भवती महिला ला प्रथम बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की हो ओकर बर पोषण बर महिला ला कोनो काम करे के जरूरत ना पड़े आराम करे तेकर स्थिति 5,000 रुपए के प्रावधान करे गए है ताकि वो अपन देख रेख कर सके और माँ के पेट में ही वो बच्चा स्वस्थ हो। एकर बाद में यदि द्वितीय बालिका होते द्वितीय नोनी होते तो ओकर पोषण बर देख रेख बर 6,000 रुपए दिए जाने के प्रावधान रखे गए है ताकि महतारी और नोनी दोनों झनला पोषण मिल सके। इकर अलावा आंगनबाड़ी केंद्र में 6 माह से 6 साल के नोनी मल्ला पूरक पोषण आहार रेडी टू ईट उकर नाश्ता और भोजन के व्यवस्था किए जाते। इकर अलावा 14 से 18 वर्ष के जो किशोरमय नोनी मन है उमल्ला भी पूरक पोषण का आहार दिए जाते ताकि उमल्ला किसी प्रकार के कोई कमी या पोषण में कमी ना हो। स्वास्थ्य जांच की भी व्यवस्था की जाती है। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से हफ्ता में एक बार नोनी मन के ओकर वजन खून की कमी के जांच किए जाते। एकर स्थिति आयरन के गोली और फॉलिक एसिड की व्यवस्था भी करे है।
1: अभी जैसे आप बताओ कि ओकर मन के लिए 5,000 रुपये की व्यवस्था करे जाते एक ताकि वो कोई प्रकार के मेहनत मत करेल पड़े और बढ़िया होकर पोषण व्यवस्था हो सके तो ये योजना के लाभ लेबर हमारे ग्रामीण महिला मन में अति जागरूकता नहीं रहा है तो काकर से संपर्क करी किस प्रकार उमला एक ये योजना के लाभ मिल पाए।
0: हमारे विभाग के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मन है
1: जी
0: सबसे मुख्य हमारे विभाग के धुरी हवे
1: जी
0: जो सभी गाँव में हवे ओकर से संपर्क करके
1: अच्छा
0: ये योजना के लाभ ले सकते।
1: अच्छा,
0: ओकर
1: अच्छा।
0: पास आवेदन फॉर्म रहे थे। ये योजना ऐसे है कि इसमें बीच में कोई भी नहीं है, सीधा आपके फॉर्म भर ही ऑनलाइन ओकर एंट्री हो ही और जब ऑनलाइन एंट्री के बाद सब प्रक्रिया हो ही तो सीधे भारत शासन से पैसा ओकर खाते में मिल जाते। इसमें कोई भी मीडिएटर या बीच के व्यक्ति नहीं है।
1: ममता भगत जी अतिक सार गर्भित जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हुए बातचीत की सिलसिला आगे भी जारी रही। संगवारी हो अभी आप में सुनत रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के सहायक संचालक श्रीमती ममता भगत जी ले हुए गोट बात। बातचीत के शेष भाग नवा अभियान के अगले अंक में सुनो। अब पीर भान साहूला अनुमति देवाओ। जय जोहार।
2: नवा बिहान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर श्रीमती ममता भगत सहायक संचालक महिला और बाल विकास विभाग रायपुर से बीर भान साहू की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग। फिल्म चिराग का गीत आपको सुनवा रहे हैं, आवाज लता मंगेशकर की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत मदन मोहन का।

0: शमशाद बेगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन का गीत। संगीत नौशाद का था, गीतकार थे शकील बदायूनी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर

0: प्रेम धवन की शब्द रचना आपको सुनवा रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत रवि का था, फिल्म का नाम था एक फूल दो माली।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: एक राज, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। चित्रगुप्त का संगीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: घराना, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रवि का,

0: घराना इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, शब्द रचना शकील बदायूनी की और संगीत रवि का था। चित्रपट संगीत में फिलहाल यहीं तक। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत, कलाकार हैं छाया चंद्राकर।
1: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।
0: सुगम संगीत में पहले

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: सुगम संगीत में अब सुनिए नीरज की रचना छाया चंद्राकर की आवाज में।

0: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थी छाया चंद्राकर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। अब समाचार विस्तार से। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तैयारी की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी महाविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं और परिणाम समय पर जारी किए जाएंगे। छात्र छात्राओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मंत्री ने विद्यार्थियों से समय पर प्रवेश लेने और नई शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाई शुरू करने की अपील की है। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। नई दिल्ली के द्वारका में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए इसे युवा शक्ति की सफलता बताया है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 किए जाने का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इस हॉस्टल में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी आयुक्त ने निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के 3 अलग अलग मामलों में आबकारी उपनिरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के आबकारी उपनिरीक्षक हरीश पटेल, भानुप्रतापपुर के ओम प्रकाश और अंबिकापुर के आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ाई। नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है और संजय अग्रवाल छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहीर भैरव। आलाप के बाद मध्यलय रचना रूपक ताल में निबद्ध है। द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तानपुरा पर हैं मदन बोंगाले और तबला।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्वमोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग अहीर भैरव। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:30 हुए हैं। हाजिर हैं हम चित्रपट संगीत के संग।

0: आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को दी गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05

0: तुम हसी मैं जवान इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी।
1: आप

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म अनजाना का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए फिल्म चांदी सोना का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुन रहे थे, फिल्म था साजन बिना सुहागन, शब्द इंदिवर के, संगीत उषा खन्ना का। अब सुनिए अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है गज़ब।

0: अमित कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना भी आप सुन रहे थे। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म का नाम था गजब। चित्रपट संगीत आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11 बजने को है। समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।

0: 300 به دور کلی سواگت کرده فرانس و بارد کی دوستی امر رای.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाज़ों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्रों से बोल रहे हैं मीडियम वेव और FM बैंड पर। प्रस्तुत है प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम अनुराग धारा। इस कार्यक्रम में सुनिए फाल्गुनी पाठक के स्वर में गुजराती गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के

चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुना।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम अनुराग धारा में अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक के स्वर में गुजराती गीत। हम आकाशवाणी के रायपुर और सराईपाली केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 11:30 हुए हैं। पेश है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म प्रतिज्ञा के इस गीत के साथ। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
2: आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: फिल्म कर्ज का गीत आप सुन रहे थे, आवाज किशोर कुमार की थी, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बढ़ते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के

0: कार्यक्रम में इतना कुछ तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
1: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा तेना 6 तक चलते जेमा तेहा मंगलवार गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
0: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं, आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत, वर्मा मलिक के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

बप्पी लहरी की आवाज में लीजिए सुनिए डिस्को डांसर फिल्म का गीत, शब्द रचना अनजान की, संगीत बप्पी लहरी का।

0: सदाबहार नगमे अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नियत नीलानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर

0: परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचाने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इस बीच नीट यूजी के परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन तक के लिए बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। वन विभाग ने गुरुवार को भारतीय वन सेवा IFS के अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाओं का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक स्तर के 7 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दिल्ली राजहरा रावघाट रेल परियोजना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 17 जून को रावघाट रेल खंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान 58 रेक का उपयोग किया गया। करीब 95 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण सेल भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के सहयोग से किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ट्रायल के बाद सुरक्षा स्वीकृति मिलने पर यात्री ट्रेन सेवा शुरू हो सकेगी। इससे बस्तर क्षेत्र में आवागमन, रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जा रहा है और नीट के परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूं विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने।

0: को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
1: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
0: ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
1: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
0: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
1: जी,
0: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
0: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
1: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
0: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
1: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओं, डल का मतलब ही झील होता है, इसीलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। यह झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है। यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम

0: चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-5559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है, गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण
2: जहाज पर नौकरी करता था,
1: जो रहस्यों और रोमांच से
2: नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की
2: एक
1: बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को
1: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर,
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाई आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके

घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर

कुत्तों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटी सी छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सबके बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां

0: अंत होगा। इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इसमें कलाकार हैं उदित नारायण। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत निखिल विनय का है, आवाज़ उदित नारायण की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं उदित नारायण। इन्हीं की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। गीत रचना फैज अनवर की है, संगीत निखिल विनय का है।

फ़ाइज़ अनवर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है निखिल विनय ने। आवाज़ उदित नारायण की है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत में अगली प्रस्तुति।

सुगम संगीत में आज कलाकार हैं उदित नारायण। इन्हीं की आवाज़ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। संगीत निखिल विनय का है, गीत रचना फैज अनवर की है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं उदित नारायण के आवाज में ये रचना। गीत फैज अनवर ने लिखा है, संगीत निखिल विनय का है।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आज कलाकार थे उदित नारायण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों

0: में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्ष

0: मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म साहेब का गीत आपको सुनवा रहे हैं एस जानकी और बप्पी लहरी की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीत बप्पी लहरी का है।

मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म चालबाज का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, गीत रचना आनंद बख्शी की है।

चित्रपट संगीत में अब सुनिए फिल्म नसीब का गीत। आवाज लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आइए अब सुनते हैं फिल्म आखिरी रास्ता का ये गीत, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत रचना आनंद बख्श की है।
1: Ready? Come on! One, two, three, four.
2: Now

इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। समय है कार्यक्रम विवरण का। रात 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन। 1:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित अनिंदो चटर्जी से तबला वादन। इसी कार्यक्रम में रात 10 सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार वादन। चित्रपट संगीत का आप आनंद लीजिएगा दोपहर 2:00। 2:30 पर रात 8:00, रात 9:15 पर, शाम 5:10 पर सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। इसमें आजकल का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का दिवस। क्रम वार्ता का विषय होगा क्या आपकी नज़रें

मोबाइल से नहीं हटती। वार्ताकार होंगी सास्वती कर और साथ ही कव्वाली। शाम 6:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी अमृता नंदी। इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगी सीमा दत्ता। किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल प्रसारित होगा शाम 7:21 पर। आज की बात का विषय होगा फसल चक्र में परिवर्तन हेतु श्री की खेती। हेलो चौपाल का विषय होगा लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं। इस विषय पर डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग से ली गई भेंटवार्ता। संचालन करता होंगे लालजी साहू, प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे। रात 8:15 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी छाया चंद्राकर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण प्रसारित होगा रात 9:25 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें सुनिएगा रात 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रसारित होगा शाम 5:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इसमें सुनिए पंडित अनिंदो चटर्जी का तबला वादन। पहले सुनिए पंडित अनिंदो चटर्जी का 3 ताल में तबला वादन सारंगी पर लहरा दिया है ध्रुव घोष ने।

अनिंदो चटर्जी का तीन ताल में तबला वादन आप सुन रहे थे। सारंगी पर लहरा दिया था ध्रुव घोष ने। इसके बाद आइए अब सुनते हैं रूपक ताल में पंडित अनिंदो चटर्जी का तबला वादन। सारंगी पर लहरा दिया है ध्रुव घोष ने।

Nothing,

Dagger,

0: पंडित अनिंदु चटर्जी का रूपक ताल में तबला वादन अभी आप सुन रहे थे। सारंगी पर लहरा दिया था ध्रुव घोष ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
0: चित्रपट संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत आवाज लता मंगेशकर की है। गीत लिखा है निदा फाजली ने, संगीत उषा खन्ना का है।

आइए आप सुनते हैं फिल्म भीगी पलके का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं एम जी हसमत, संगीत जुगल किशोर का है।

नक्श लियालपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है खयाम ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है। आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खानदान का ये गीत।

0: इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में

0: न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
5: Our position on Indus Water Treaty is well known.
6: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा हो। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। पहले सुनिए ये संदेश।
8: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
9: फोनिंग फॉर वॉइस। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
10: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
8: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
11: गीत मेरे होठों को गया कोई।
8: कभी कोई किस्सा याद आता है।
10: यादें
8: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
12: मुझे कुछ कहना है,
13: मुझे भी कुछ कहना है।
8: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार 11:05 पर।
14: सुनिए।

फिल्म सैनिक का गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें साधना सरगम और कुमार शानू की हैं, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़त हो, फिर पढ़ के भुला जात हो।
0: अरे त सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: त काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तय बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने, आवाजें पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की है। आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का ये गीत।

लीजिए अब सुनिए फिल्म दामिनी का गीत। आवाजें साधना सरगम और कुमार शानू की हैं। गीत लिखा है समीर ने, संगीत जतिन ललित का है।

अलका याज्ञिक और कुमार शानू के युगल स्वर में आइए सुनते हैं अनवर सागर का लिखा गीत, संगीत अन्नू मलिक का है, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

0: ओम शांति ओम। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज केके की थी। गीतकार थे विशाल और संगीत तैयार किया था विशाल शेखर ने। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, ये सभा अब समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 5 बजे इसी बैंड और फ्रिक्वेंसी पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति।
1: मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिकारियों से अपील की कि पूर्ण उन्मूलन के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
2: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है इस चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
3: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।

वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और वक्त है मन भावन का, और इस समय में हम आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचाएंगे। हमारा ईमेल का पता है fmgoldaird@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868867533। आपके साथ हूं मैं शिव प्रकाश, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप अपनी फरमाइशें संदेशों के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल का पता भी हमने आपको बता दिया है और व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया है। हमारे बहुत सारे पुराने जो श्रोता हैं उनके लगातार संदेश आ रहे हैं, उसी में से एक संदेश हमने लिया है होली चौक उत्तम नगर से। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल का है। इन्होंने 20 साल बाद फिल्म से 3 नगमे अपनी फरमाइश के तौर पर भेजे हैं। उसमें से पहला नगमा हमने ले लिया है, हेमंत दा की आवाज़ है आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ, बहुत सारे पैगाम आप लोगों के हमारे साथ हैं और हम आप तक आपके पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, आपकी फरमाइशें भी पहुंचा रहे हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं और इन्होंने जो फरमाइश भेजी है, फिल्म दोस्त का गाना सुनना चाहा है, वो हमने ले लिया है। और कुछ पैगाम हम शामिल करना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम सदस्य जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। और हमारे पास धमधा ग्राम सुखरी कला, अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, अंशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और भी बहुत सारे पैगाम लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पौरुष भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का भी। और सनावत से शेख मूसा मोहसिन जुड़े हुए हैं और इनको भी एक फरमाइश इन्होंने भेजी है, चलिए वो भी हम देख लेंगे। और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती गौरी, ओम कुमार सुरलकर भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, ऊपर कोट बुलंदशहर से भी जुड़े हुए हैं, इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और साथ ही हमारे पास कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम जैनब भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। विष्णु गार्डन नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं नईम खान, अकरम, निसार और सारुन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा, सतीश अनेजा भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम आप तक पहुंचाते हैं फिल्म दोस्त का ये नगमा, जहां स्वर है किशोरदा का।

जी हाँ, हमें भी आप लोग बुला रहे हैं अपने संदेशों के जरिए, तो हम आपसे फिर से मुखातिब हो गए हैं आपके संदेशों के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई से। इनकी पसंद का एक नगमा हमने ले लिया है, और भी बहुत सारे पैगाम हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास सिडनी ऑस्ट्रेलिया से संदेश आया है प्रतीति घोष का। ये कह रही है कि मैं सिडनी से ये कार्यक्रम सुन रही हूँ और मुझे पसंद आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक फरमाइश भी हमें भेजी है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश ज़रूर लें। और एक और संदेश आया हमारे पास सरोज बंसल और अनूप कौर का गुरुग्राम से। इन्होंने हमें कार्यक्रम के लिए बधाई भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमारे चैनल पे, हमारे कार्यक्रम पे यूं ही बना रहे। और अनीता वर्मा जुड़ी हुई है पीतमपुरा दिल्ली से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे पास शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी भी जुड़े हुए हैं। और चलिए, मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सजदा रानी, हिना कौसर, तमाम लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे पास कई पैगाम आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा से लिखते हैं कि सबा अंसारी जुड़ी हैं, शकील अंसारी, हिना अंसारी, आफ्ताब अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदली नंदनी हैं और अंजलि हैं। इन लोगों ने भी हमें पैगाम भेजा है। साथ ही हमारे पास शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का ये पैगाम आया है, और इन्होंने भी एक फरमाइश हमें भेजी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की फरमाइश शामिल करें जितना भी हो सका। साथ ही हमारे पास जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास बाजार रोड मुंगलीपुर से, मुंगीसापुर से संदेश आया, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून साविस्ता, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी भी जुड़े हुए हैं। इनको कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है हमें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे पास बागपत, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी, तमाम लोगों का यह पैगाम आया है। चलिए, फिल्म संगम का यह नगमा आप लोगों की फरमाइश पर मुकेश जी की आवाज़ में।

0: तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
5: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश और आपके पैगाम हम शामिल कर रहे हैं मन भावन में। और इस कार्यक्रम में जो हमारा आपके संदेशों के आने का जरिया है वो व्हाट्सएप के जरिए है और ईमेल के जरिए है। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868868753 और ईमेल है fmgoldair@gmail.com। आपके बहुत सारे पैगाम लगातार हमारे पास आ रहे हैं। बिसाऊ राजस्थान से दिनेश राज कुमार, विजय, पंकज, दयाल, राकेश, ये तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का पैगाम आया हुआ है अलीगढ़ से, इन्होंने भी संदेश भेजा है। और मोताला बाजार से हमारे पास बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, वजीर, सोहिल, सैयद तैमूर, शामिर खान और अजलान का ये संदेश आया हुआ है। भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधे श्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा देवांगन भी जुड़े हुए हैं। और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन भी जुड़े हुए हैं। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ख्याला से उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बार बार संदेश आप लोगों से गुजारिश है कि ना भेजें। और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और पुराना तालाब डुमराव से भी ये जुड़े हुए हैं। वलीउल्ला अंसारी हैं, आसमानाज हैं, गुड़िया रानी और शबनम बानो हैं। और उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत भी जुड़े हुए हैं। पाकुड़ झारखंड से ये लोग जुड़े हुए थे। और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा भी हमसे जुड़े हुए हैं। चलिए तो एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है फिल्म इजाज़त का, स्वर है आशा जी का, आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

जी आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं मन भावन। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ संदेश शामिल कर लेते हैं। एक संदेश आया हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का। इन्होंने फिल्म नटवर लाल का गाना सुनना चाहा है। लता जी और किशोरदा की आवाज में हमने वो गाना ले लिया है। आगे बढ़ते हैं और साथ ही हमारे पास इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बेबी अंसारी, डब्लू अंसारी का भी ये पैगाम आया हुआ है। और उमा राज, कुलदीप राज, जगदीश राज, प्रभा रानी राज का हमारे पास डोडी लोहारा बालोद से संदेश आया हुआ है। और गौरैया जलंधर से अशोक जाटव और छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया का भी हमारे पास ये पैगाम आया हुआ है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह ये भी जुड़े हुए हैं पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। और मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब और यूसुफ भी जुड़े हुए हैं छिपा कॉलोनी खंडवा से मध्य प्रदेश से। और भी हमारे पास संदेश हैं बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा नाज अंसारी भी जुड़े हुए हैं। और सुमित, अनीता भगवती कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से जुड़े हुए ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया और गरिमा बगड़िया भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका शर्मा भी जुड़े हुए हैं बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महादेवपारा से मीरा, सिमरन और माया राजवाड़े भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे पास जे कॉलोनी मदनपुर खादर दिल्ली से शाहना बेगम अजहर और इर्शाद अहमद का ये पैगाम आया हुआ है। और साथ ही आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, वेद प्रकाश चौहान, सूबेदार अमर सिंह का भी ये संदेश हमारे पास आया हुआ है। और हरजिंदर भाटिया का हमारे पास संदेश आया हुआ है। हरजिंदर भाटिया ने इनके साथ एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से आप जुड़े हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और साथ ही हमारे पास रघुवीर नगर से जुड़े हुए दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब लड्डू ये रघुवीर नगर दिल्ली में है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और गुरमीत सिंह मीता जुड़े हुए हैं साउथ एक्सटेंशन से और ये लिखते हैं खुशनुमा गोल्ड। तो चलिए एक और बहुत प्यारा सा गाना लता जी और किशोर कुमार की आवाज़ में।

जी हाँ साथियों, आपके बहुत सारे पैगाम अभी भी शेष हैं, तो चलिए हम कुछ पैगाम और शामिल कर लेते हैं चलते चलते, और इसके बाद आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़े हुए हैं संदीप।

मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे पास संदेश आया है किशन वजनानी का, नीलम, स्वाति, किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और शमशुल कमर राही का गंज डुंडवाला से ये पैगाम आया हुआ है, शाहीन, फातिमा, अदनान, अनुखान भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और भी कमलकांत गुप्ता जुड़े हुए हैं, समडील नवापारा, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता भी हैं आपके साथ, राधे गुप्ता, दीपक, अंकु, राघव भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही नासिर शेख का हमारे पास ये पैगाम आया हुआ है, ये जुड़े हुए हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दुर्गा सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका सैनी, दीपिका सैनी, शनि चौक खांडवा मध्य प्रदेश से आप जुड़े हुए हैं। साथ ही सुरेश नारंग जी का हमारे पास सहारनपुर से पैगाम आया, आशा नारंग, सोनाली नारंग, सैयद मसरूर भी इनके साथ शामिल हैं। और जवाहरनगर दुर्ग से जुड़े हुए आरसी कांबड़े, करुणा, मीणा, अश्विनी, विपुल कांबड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे चलने का वक्त करीब आ गया है, तो आप बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, स्वस्थ और प्रसन्न रहें और खुशियां बांटते रहें इस नगमे के साथ जो हमने लिया फिल्म शराबी से, किशोर दा और साथियों की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एवियाओं में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नव प्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो, वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आगे बढ़ने से पहले हम आप तक कुछ बातें पहुंचाना चाहते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम देश में और विदेश में आयोजित किए जाएंगे और स्वस्थ और निरोगी रहने की श्रृंखला में ये कार्यक्रम हम मनाते हैं और पूरी दुनिया में भारत की एक अनूठी पहचान इस कार्यक्रम के जरिए बनी है। तो हम ये कहेंगे कि आप भी अपने तन और मन को अच्छा रखने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए योग को अपनाएं और योग से आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। इसी दिन एक और कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में, उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी साझा करना चाहेंगे। और जैसे योग से तन और मन दोनों स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से मन को खुश रखने के लिए कभी कभी मनोरंजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी दिन दोपहर 3 बजे से 21 जून को ही लाजपत नगर लाजपत भवन में नाटक का मंचन होगा, बकरा हलाल कर गया। और दूसरा एक नाटक है, हास्य नाटक है, साली आधी घरवाली, और इसके जो निर्देशक हैं वो हैं मनोज हैरी। और कार्यक्रम का स्थान हमने आपको बताई दिया, लाजपत भवन लाजपत नगर दिल्ली। इसके बाद एक संगीतमय शाम का भी आयोजन होगा, तराना के नाम से इस कार्यक्रम का नाम रहेगा। तो आप इन सभी कार्यक्रमों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको चलते चलते बता दें कि 8:10 पर आप सुन सकते हैं मधुरिमा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं रागों पर आधारित फिल्म संगीत, और आपके साथ होंगे संजीव अग्निहोत्री। रात 10:30 पर आप सुन सकते हैं हर श्रृंगार, इस कार्यक्रम में भी आपके साथ होंगी कुसुम लता। और रात 11:45 पर गीत मेरे मनमीत कार्यक्रम में आपके साथ होंगी कुसुम लता।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
3: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म गाइड में, और उनके साथ थी लता मंगेशकर। इस नगमे के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ ही देर में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ प्रसारित की जाएगी।

0: 56 years. Application forms can be downloaded from the website and must apply within 60 days from the release of this advertisement in the Employment News. And the website is www.ccras.nic.in. The Indian National Space Promotion and Authorization Center has invited applications for engagement of young professionals grade 1 and 2 on contractual basis for various directorates. The engagement is initially for 1 year, extendable up to 3 years based on performance and organizational requirements. Eligible candidates with qualifications in engineering, science, management, law, economics or related disciplines may apply online through the official website. The last date for submission of applications is 20th June 2026 and the selection will be based on shortlisting before by interview. For details, do refer to the website at www.inspace.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय श्री विजयपुरम कार्यपालक अभियंता सिविल के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट andamannicobar.gov.in या apwd.and.nic.in। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव पद के लिए 1 सदस्य की रिक्ति भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निहित पात्रता शर्तें और अन्य विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर dopt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। महाप्रबंधक AHL, प्रबंधक विधि, फार्मासिस्ट दवा खरीद, इन सभी पदों के लिए आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष। सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.upmsc.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मरीन इंजीनियर पायलट अनुबंध पर तथा योजना 1 अथवा 2 के तहत पायलट अनुबंध के आधार पर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT संस्कृत के 1 पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, नियम और शर्तों के लिए देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट sschittorgarh.edu.in। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कैंपस निदेशक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.imu.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संग के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सरबजीत कौर। सरबजीत, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू आवर डियर लिसनर्स ट्यून टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। एंड एज करिश्मा जस्ट यू नो स्पेल्ट आउट द डिटेल्स, द नेक्स्ट 30 मिनट्स लिसनर्स आर गोइंग टू बी पैक्ड विद न्यूज discussion segment which is called Dateline India. There are going to be some reports, capsules, and of course towards the end of the program we shall together flip the pages of history to see what makes this day, that is 19th of June, so important. All this over the next 30 minutes. Let's begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia.
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे।
2: प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेज इंडिया ऑन ट्रैक टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज वेल बिफोर 2047 टारगेट।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा।
2: India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism.
1: और मेक्सिको दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी।
2: And listeners, as we promised you at the outset of the program, time now for our segment which is called Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. Today we will be focusing on International Sickle Cell Day and National Reading Day. Listeners, today we are talking about an important global health observance, International Sickle Cell Day, which is observed every year on June the 19th.
1: बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने सिकल सेल डिजीज, जिसे अक्सर SCD भी कहा जाता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए जांच, इलाज और देखभाल की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के मकसद से इस दिन को मान्यता दी है।
2: द थीम फॉर दिस ईयर इज क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल केयर। दिस थीम एम्फसाइजेस प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू ट्रीटमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस।
1: और हम में से कई लोगों ने शायद ये नाम पहले सुना हो या नहीं भी सुना हो, लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि सिकल सेल बीमारी अक्सर असल में होती क्या है। तो आइए इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि सिकल सेल बीमारी है क्या।
2: Well, Karishma, sickle cell disease is an inherited blood disorder. Normally, red blood cells are round and move easily through blood vessels, but in SCD, these cells become crescent-shaped or sickle-shaped, and because of their shape, they can block blood flow, causing severe pain, infections, fatigue, and serious health complications.
1: बिल्कुल, और यह जीवन भर रहने वाली बीमारी है, लेकिन सही मेडिकल देखभाल और समय पर बीमारी का पता चलने से इस बीमारी से लोगों को बचाया भी जा सकता है, ज्यादा स्वस्थ और बेहतर जिंदगी भी वो जी सकते हैं। तो सिकल सेल बीमारी संक्रामक नहीं है, यह माता पिता से जीन के जरिए मिलती है।
2: वेल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेम्बर, बिकॉज अवेयरनेस हेल्प्स रिड्यूस मिसकंसेप्शंस एंड स्टिग्मा। Well, you know, one of the biggest challenges is that many people are diagnosed late or don't have easy access to specialized healthcare.
1: और इसलिए जागरूकता अभियान इतने जरूरी हैं। ये शुरुआती जांच, जेनेटिक काउंसलिंग और समय पर मेडिकल मदद को बढ़ावा देते हैं। ये समुदाय को इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने और इससे जूझ रहे लोगों का साथ देने में भी मदद करते हैं।
2: इन आवर कंट्री द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन व्हिच फोकसेस ऑन वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग फॉर एट रिस्क पॉपुलेशंस। द मिशन एम्स टू इम्प्रूव द केयर ऑफ ऑल sickle cell disease patients for a better future and to lower the prevalence of the disease through a multi-pronged coordinated approach towards screening and awareness strategies.
1: और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना भी की।
2: द प्रेसिडेंट सेड द स्टेट हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन सेवरल फ्रंट्स अंडर द मिशन।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
2: The president noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule.
3: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश ने कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: तो कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत लगाई गई एक विशेष प्रदर्शनी का भी दौरा किया। इस प्रदर्शनी में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम, जांच और इलाज से जुड़ी विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया।
2: As we observe International Sickle Cell Day today, let's remember that awareness, compassion and support can make a real difference.
1: और चाहे बीमारी के बारे में हमें जानना हो, हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए बढ़ावा देना हो, प्रभावित परिवारों की मदद करनी हो या फिर सही जानकारी फैलाना हो, हर कदम मायने रखता है।
2: एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट दैट टुगेदर वी कैन हेल्प क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल लिविंग विद सिकल सेल डिजीज रिसीव द केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज दे डिजर्व।
1: तो श्रोताओं, बढ़ती हुई जागरूकता, रणनीतिक स्क्रीनिंग पहल और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के तरीकों के जरिए मामलों की पहचान करने, देखभाल प्रदान करने और 2047 तक सिकल सेल डिजीज को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर खत्म करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
2: एंड एज दीज एफर्ट्स कंटिन्यू टू एक्सपैंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड एज ग्रुप्स, दे रीइंफोर्स इंडियाज रिजॉल्व टू एनहांस हेल्थ केयर आउटकम्स एंड प्रमोट वेलबींग among its diverse population, particularly in tribal and high prevalence areas. Let's go on to the next topic of deliberation, Karishma, and that is about the National Reading Day.
1: Bilkul.
2: Read and grow, let reading become a habit and knowledge a way of life, said the great P.N. Panikkar. Today we are also celebrating a day that reminds us of the incredible power of books and learning.
1: तो बिल्कुल सही कहा आपने, आज 19 जून को यानी कि आज के दिन भारत राष्ट्रीय पठन दिवस मना रहा है, जिसे नेशनल रीडिंग डे भी कहा जाता है। यह दिन पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुथुवायल नारायण पड़ेकर के शानदार योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित है, जिन्हें प्यार से भारत के पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी माना जाता है।
2: सो फ्रेंड्स, वेदर यू आर अ फैन ऑफ नॉवेल्स, बायोग्राफीज, कॉमिक्स, मैगजीन्स और इवन audiobooks, today is all about celebrating the joy of reading. And of course, it has something to do with P.N. Panikkar, but tell us more.
1: बिल्कुल, तो क्या आपने कभी सोचा है कि नेशनल रीडिंग डे यानी कि 19 जून को ही क्यों मनाया जाता है? अगर इसके बारे में बात करें तो पीएन पनिक्कर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनका मानना था कि शिक्षा और किताबों तक पहुंच समाज में

0: बदलाव ला सकती है। उनकी कोशिशों ने खासकर केरल राज्य में एक बड़े लाइब्रेरी आंदोलन को प्रेरित किया था।
1: His dedication led to the establishment of one of Kerala's earliest public library initiatives in the year 1945 and encouraged communities to make books accessible to everyone.
0: और 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह समारोह की शुरुआत की थी, जिससे पठन दिवस मनाने की परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान मिली।
1: Imagine creating a movement that inspires generations to read.
0: और पढ़ने में हमें सिर्फ परीक्षा पास करने में ही मदद नहीं मिलती, बल्कि इससे हमारी शब्दावली बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ का दायरा भी बढ़ता है।
1: And of course, I'd like to add to this list, Karishma, that reading can take us on adventures without ever leaving our homes. Reading is a wonderful habit. Let's hear from a few children as they share their thoughts on reading.
2: I am Vihan Durgapal from Standard 6. You know, usually whenever I get a book, I just finish it in 2 or 3 days and then I'm bored and then I ask for more books. But and at home when I'm usually reading, so I get so engrossed, I don't really keep track of time. So I just finish one book in 60 minutes. So after that I get bored and then I ask for more books.
3: My name is Daksh. I'm in 6th grade. Reading about space is my hobby. I also read about engineering and other stuff. I started reading about history now more, and I read about how things work because I'm curious about how things work.
1: Wow, Karishma, that sounds so interesting. The younger generation so much into reading.
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और राष्ट्रीय पठन दिवस नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालने और व्यक्तिगत विकास पर इसके सकारात्मक प्रभाव के महत्व को भी उजागर करता है। पढ़ने से शब्दावली बढ़ती है, भाषा और बातचीत के कौशल में सुधार होता है और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि एकाग्रता बढ़ती है, तो ये जो बच्चे बात कर रहे थे कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत जरूरी है पढ़ना।
1: एब्सोल्युटली, वेरी करेक्टली सेड करिश्मा। एंड रीडिंग इज सच अ हैबिट दैट इट स्टिम्युलेट्स इमेजिनेशन, creativity, critical thinking, while expanding knowledge about different subjects, cultures and perspectives. By encouraging people of all ages to read, the National Reading Day promotes lifelong learning, academic excellence and informed citizenship. The day also serves as a reminder of the valuable role that books and libraries play in shaping educated, aware and empowered communities.
0: बिल्कुल, और एक किताब हमें नए विचारों, संस्कृति और नजरियों से भी परिचित करा सकती है।
1: So here's the challenge. Spend at least 20 minutes reading a book of your choice today.
0: और अगर आप पहले से ही नियमित रूप से पढ़ते हैं तो क्यों ना अपनी पसंदीदा किताब किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को रिकमेंड करें।
1: A very great idea, Karishma. Reading becomes even more enjoyable when shared with others.
0: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
1: करिश्मा, लेट्स फर्स्ट गो टू कर्नाटका, वेयर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड इनॉग्रेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट इनक्यूबेशन सेंटर एट आईआईटी धारवाड लास्ट ईयर इन अक्टूबर टू एक्सेलरेट बायोटेक्नोलॉजी, डीप टेक एंड न्यू जेन टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। द इनक्यूबेशन सेंटर इज हेल्पिंग प्रमोट स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ कर्नाटका। वी हैव सम मोर डिटेल्स on this from our correspondent.
4: IIT Dharwad in North Karnataka has a state-of-the-art incubation center started with the combined support of MP Lads funds of over 5 crore rupees contributed by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Another 5 crore rupees was funded by the Biotechnology Industry Research Assistance Council. The incubation center is also known as Dharti BioNest Incubation Center. While speaking at a session during the recently held CSIR Rice Conclave in Bengaluru, the associate Dean of the Entrepreneurship and Dharti in IIT Dharwad, Professor Amar Keshav Gaonkar, explained the role played by the Incubation Center in mentoring young innovators and entrepreneurs eager on venturing into startups.
5: If the student comes with certain idea and if we found out the idea is really viable, so what we assign a mentor to that particular student, and that mentor is a faculty who is an expert in that particular domain. We provide certain funding also, and we see there are some success stories which are coming at IIT Dharwad, and you will come to know in another 2 or 3 years there are wonderful startups that will be coming.
4: Professor Gaonkar says that IIT Dharwad Dharti Incubation Center fuels the growth of startups and entrepreneurs, turning cutting-edge research into real-world products, transforming ideas into a real-world impact. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
0: और कर्नाटका के बाद अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां सरकार पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी प्रदान की है, जो पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।
6: हिमाचल प्रदेश में पशुपालकों की आजीविका में सुधार लाने और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। ये नीति चराई प्रबंधन व्यवस्था में सुधार कर उसे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीति पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करते हुए राज्य में एक समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। इस महत्वाकांक्षी नीति के अंतर्गत अब पारंपरिक और कठोर प्रतिबंधों के स्थान पर वैज्ञानिक और लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। नीति में जिम्मेदार चराई को घास भूमियों की उत्पादकता बनाए रखने, मिट्टी में कार्बन भंडारण बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण का प्रभावी माध्यम माना गया है। इस नीति के अंतर्गत पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा, जिसमें अगले 6 महीने के भीतर पशुपालकों को अपना नाम, पता, पशुओं की संख्या, चराई मार्ग और पड़ाव स्थलों का पंजीकरण करवाना होगा। इस प्रणाली के माध्यम से पशुपालकों की जानकारी के आधार पर आधुनिक विधि से हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से किया जा सकेगा। इस नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उन पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता दी जाएगी जो वर्षों से बिना किसी औपचारिक अनुमति के चराई कार्य करते रहे हैं। नीति के अनुसार पारंपरिक चरवाहों, जिन्हें पोहाल कहा जाता है, को भी आधिकारिक रूप से राज्य पोर्टल में शामिल कर उनकी सुरक्षा और आजीविका को संरक्षण दिया जाएगा। पारंपरिक चराई विरासत को आधुनिक विकास परियोजनाओं से सुरक्षित रखने के लिए नीति में पारंपरिक प्रवासी मार्गों, जल स्रोतों और पड़ाव स्थलों के संरक्षण का विशेष प्रावधान किया गया है। इन सभी मार्गों को विशेष मानचित्रण परियोजना के तहत जियो टैग किया जाएगा। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं प्रभा शर्मा।
1: Karishma, we were just discussing about, you know, all the good things about reading. We spoke about the National Reading Day too. Similarly, theatre is another ground where creativity, imagination and expression blossoms. So Manipur, renowned for its rich cultural heritage and performing arts, has witnessed the celebration of the 52nd Shumang Leela Festival in Imphal recently. Shumang Leela, the traditional courtyard theatre of Manipur, holds a special place in the cultural life of the state for its powerful storytelling, social messages and lively performances. The festival brought together theatre artists, cultural enthusiasts and audiences in a vibrant celebration of Manipuri dramatic art. Details on this from our correspondent.
7: The 52nd Shumang Leela Festival was held from 26 May to 16 June 2026 at the Iboyama Shumang Leela Sanglan, organized by the Manipur State Kala Academy. The governor of Manipur, Ajay Kumar Bhalla, graced the inaugural function as the chief guest, while Minister Khurajam Lokal Singh attended the program as the president. Addressing the gathering, Governor Ajay Kumar Bhalla highlighted the rich culture and heritage and resilience of Manipur and stressed the importance of preserving indigenous art forms for future generations. He noted that Shumang Leela is not merely a form of entertainment but a powerful medium for social awareness, culture and identity and communal harmony. Sri Bhalla said,
8: another important feature of Shumang Leela is that its themes have evolved with time. From stories rooted in mythology, folklore and history, it has moved on to address contemporary issues and other social concerns. In doing so, it has kept pace with changing times while preserving its relevance.
7: The festival attracted large gatherings of theater lovers and cultural enthusiasts from different parts of Manipur. 27 renowned Sumang Lila troupes presented performances based on social themes, history, humor, and modern values, reflecting the richness of Manipuri society and tradition. The 52nd Sumang Lila Festival concluded on 16 June. Sanalaibak Nachom artists bagged first position, while the Shanghai Artists Association secured second position in the competition. Prizes will be distributed during the inauguration ceremony of 53rd Sumang Lila Festival to be held next year. Jeje Thakchom, Akashvani News Parikrama, Imphal.
0: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की, जिसमें आज मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मैक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल रात अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा।
1: In cricket, seamer Harshit Rana has been added to the Indian squad for the third and final one-day international against Afghanistan, which will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai tomorrow. And time for some business news now. Benchmark domestic equity indices ended lower today, snapping a five-day rising streak. The Sensex shed 607 points, nearly 0.8%, to close at 76,803, while the Nifty fell 155 points or 0.64% to settle at 24,013. For more updates about the market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
0: और श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
9: We remember writer and freedom fighter Pandit Madhav Rao Sapre, who was born on June the 19th, 1871, in Patharia village in Damoh district of Madhya Pradesh. Sapre was inspired by Lokmanya Bal Gangadhar Tilak towards the freedom struggle.
10: A brilliant student, Sapre developed a passion for Hindi language and literature. The British government invited him for appointment to high posts in government jobs, but he turned down the offer and instead chose to become a teacher at a meager salary to support the freedom struggle and promotion of Hindi. He started publication of monthly paper Chhattisgarh Mitra in 1900.
9: With the inspiration of Madhav Rao Sapre, Anand Samaj Reading Room was established at Kankalipara, Raipur, which emerged as a center of national consciousness and political discourse. In 1905, Sapre established Hindi Granth Prakashan Mandali in Nagpur and started the publication of a monthly magazine called Hindi Granth Mala in the year 1906. In one of its issues, a long essay titled Swadeshi Movement and Boycott was published. The magazine was closed in the year 1908 under the British Government Press Act.
10: In the Congress session of 1905 at Varanasi, Madhav Rao Sapre met Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. He was greatly influenced by Tilak's thoughts and wanted to spread his ideology in Hindi. With the permission of Bal Gangadhar Tilak, Sapre started the publication of the Hindi version of Tilak's Marathi newsletter, Kesari, in Nagpur in 1907, under the name Hindi Kesari Weekly. Sapre translated the Gita Rahasya, written in Marathi by Bal Gangadhar Tilak, into Hindi. He was arrested for writing seditious articles like Blackwater in Hindi Kesari.
9: Sapre considered untouchability as a social stigma and was a strong advocate of girls' education and women's freedom. In the year 1912, he established the Janaki Devi Kanya Pathshala in Raipur. In 1921, on the call of Gandhiji, he got the National School and Hindu Orphanage established in Raipur for the education of the students.
10: Sapre continued to generate political awakening through his discourses in many cities of Chhattisgarh. He was elected president of the All India Hindi Sahitya Sammelan in 1924, held in Dehradun. The great writer breathed his last on 23rd of April 1926 in Raipur. Salutes the great nationalist.
9: We also remember Gandhian nationalist Nana Bhai Khand, who was martyred on the 19th of June 1947. A resident of Dungarpur, Rajasthan, Khand was a popular Bhil leader and used to run a Gandhian institution, Dungar Seva Sangh, to look after the Bhil school at Rastapal. The tyrant ruler of Dungarpur, Maharawal, was opposed to the Dungarpur Seva Sangh and ordered for the closure of the school. On the 19th of June 1947, the superintendent of police and his team reached the village and ordered Nana Bhai and Master Senga Bhai to close down the school.
10: On their refusal to obey the order, the police started beating Senga Bhai, dragged him out of the school building and tied him to the police truck by a rope. In his bid to save the life of Senga Bhai, Nana Bhai chased the moving truck. The policemen thrashed Nana Bhai repeatedly and so severely that he died on the spot.
0: और इसके साथ ही आज प्रसिद्ध मिमिक्री कलाकार नरेला वेणु माधव की पुण्यतिथि है। वे भारत में मिमिक्री कला को लोकप्रिय बनाने वाले पहले कलाकारों में गिने जाते हैं और उन्हें भारतीय मिमिक्री आंदोलन का अग्रदूत भी माना जाता है। वेणु माधव अपनी आवाज की अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे नेताओं, अभिनेताओं, पक्षियों और पशुओं की आवाजों से इतनी सटीक नकल करते थे कि श्रोता आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्होंने देश विदेश में हजारों मंचों पर प्रस्तुतियां दी और भारतीय मिमिक्री कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मिमिक्री को एक सम्मानित कला के रूप में स्थापित करना था और इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
1: Listeners, we are also paying tributes today to Ramanand V. Raghavan, a highly respected master of the Mridagam. He was a key initiator for the Cleveland Tyagraj Aradhana. We have a rendition for you.

0: श्रोताओं, इसके साथ ही आज भारतीय सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार भगवती प्रसाद मिश्रा की पुण्यतिथि है। वे भारतीय फिल्म उद्योग के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण निदेशकों और पटकथा लेखकों में शामिल थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम विशेष रूप से आलम आरा से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत की पहली बोलती फिल्म माना जाता है। इस फिल्म ने भारतीय फिल्म उद्योग में एक नए युग की शुरुआत की और मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों की ओर परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। उस दौर में तकनीकी चुनौतियों के बावजूद उनका योगदान भारतीय सिनेमा के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ।
1: We are paying tributes today to Raj Chandra Bose, Indian mathematician and statistician, born at Hosangabad in Madhya Pradesh. Bose made many valuable contributions to the subject. He discovered new codes for telecommunication. In the year 1976, America's highest honor to a scientist came to Bose as he was elected fellow of the US Academy of Sciences.
0: और इसके साथ ही आज हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्माता, निदेशक और लेखक सोमू मुखर्जी की जयंती है। आपको बता दें कि वे हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित मुखर्जी परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया और फिल्म उद्योग में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके चर्चित फिल्मों में एक बार मुस्कुरा दो, नन्हा फरिश्ता, लव इन बॉम्बे शामिल हैं और वे प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा के पति और अभिनेत्री काजोल के पिता हैं।
1: Listeners, we are remembering today the great Ustad Nasir Zahiruddin Dagar, a legendary Draupad vocalist belonging to the historic Dagar Gharana. Alongside his brother, he was part of the famous junior Dagar brothers duo that kept the ancient classical vocal art of Draupad alive on global stages.

0: ऑन दैट क्लासिकल नोट इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू से गुड बाय करिश्मा।
1: तो इसी के साथ श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और सरबजीत कौर को। नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है। 5 बजे है हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाल केंद्र है, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: हाथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नवाडी टुकुडाण पेंडारी बूढ़ाडाण कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये सकालो किशुनपुर घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली जमीरा मसगा डांडपारा लक्ष्मणगढ़ सुखरी भंडार सायर ससकालो सत्तीमुड़ा शिवनाथपुर घासीडी बोड़ाझरिया ढोढ़ा गांव दांतीढाब गढ़गांव बैगहवा चोरकी पानी कंडराजा घोड़ाघाट नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 104 है। ये लोटान पुरुंगा बनहर सिंघीछा बेहरामार इंचपारा कंचीरा कोयलार सागरपुर सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर आमाटिकरा नवापारा मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया जुनवानी कशडोल राट रोड झिंगोल नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तेंदुचुआ कोठारी रामपुर अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 5:10 पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण आप सुनेंगे। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, ये दोनों कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:25 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। शाम 7:00, रात्रि 8:00 और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। किसान साथियों के कार्यक्रम चौपाल में शाम 7:21 पर सुनिएगा, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल चक्र परिवर्तन हेतु श्री अन्न की खेती। क्रम हेलो चौपाल में सुनिएगा, लाख लगाए लाखों कमाए जीवन समृद्ध बनाए। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी छाया चंद्राकर। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्म गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आइए आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10:00 सुनिएगा, जिसमें सुनिएगा विवेक करमहे का गायन ठुमरी और दादरा। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9:25 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम संस्कृति। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर सुबह 7:05 पर और चर्चा स्वस्थ फेफड़े और दिल की क्षमता के लिए प्राणायाम और योग। सुबह 8:30 पर सुनिएगा समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, पीसीओडी के कारण लक्षण और उपचार। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर आंचल अग्रवाल। बातों बातों में सुनिएगा सुबह 9:40 पर लोक संगीत में सुनिएगा पंडवानी गायन, कलाकार होंगी विदुषी शांतिबाई चेलक और साथी। नई फिल्मों से सुनिएगा सुबह 10:00 सदाबहार नक में आप सुन सकते हैं सुबह 11:05 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत, ये गीत दोपहर 12:30 पर। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा दोपहर 1:30 पर, जिसमें आज के गोठ में योग भगाए रोग और फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम जोहार बहनी। शाम 5:10 पर युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी, जिसमें अपन गोठ का विषय होगा विश्व शरणार्थी दिवस, आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 होने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण।
1: अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लानरी हॉल से मैं प्रीति

0: मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, that are numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: एंड वी गॉट अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रीति व्हेन वी गॉट अ जॉब, एंड नाउ यू सी एवरीथिंग इज डिजिटल, सो इंडिया इज आल्सो गॉन अहेड विद द वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज्ड नाउ। एंड टुडे इनफैक्ट अराउंड 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters, and that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क, व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार। What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number, and 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
0: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में। और हाँ बोलो।
1: या यू जस्ट कंटिन्यू
0: इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक

0: नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है। तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों। और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
1: आती है। People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, साथ है भारत सरकार।
0: जी और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे। और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके। और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है। जी
1: एंड यू नो दिस प्रोग्राम ऑपरेट्स अंडर ड्यूअल इंसेंटिव स्ट्रक्चर स्प्लिट इनटू टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जिनको पहली बार नौकरी मिली
0: पहली बार।
1: दिस कंपोनेंट फोकसेस डायरेक्टली ऑन द यंग इंडिविजुअल्स एंटरिंग द फॉर्मल वर्कफोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द एलिजिबिलिटी इज न्यू एम्प्लॉयज जॉइनिंग एन ईपीएफओ, that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh and the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions and then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage capped to a maximum of rupees 15,000, right? And then the disbursement will be in 2 stages, that is through the direct benefit transfer DBT, through the Aadhaar verification in 2 equal installments, using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months, so after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the, so that more and more people get employment. And they also, the employer also earns, the employees also earn.
0: बिल्कुल सभी को फायदा है।
1: Yes.
0: बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: See, and then one more thing. See, the Minister of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
0: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. Hmm. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years.
0: Hmm.
1: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
1: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम, एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now. And already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे. और 20,000 से 1,00,000 तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
1: Has been to generate more than 3.5 crore jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they take in a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
0: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा.
1: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
0: 4 श्रम संहिताएं लागू. मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना. जी.
1: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So, we are going digital in every field. So, we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
0: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
1: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स. दे आर ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल. सो एज सून एज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन, इट विल कम टू देयर फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर.
0: An amount will be transferred. और कैमरा मैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं? आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं.
1: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज establishments registered with the EPFO that successfully generate net new employment. To qualify, smaller firms fewer than 50 baseline workers must hire at least 2 new employees, while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
0: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुन्नानी और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
1: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job and our prime minister has given this job to me. So I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know, I'm sure I'm going to come up, and I think they're all looking towards the door. I'm sure the prime minister is about to arrive, and once he arrives, then the other deliberations will take place. The union minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button, the magic button. that's the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way. Is on that route right now.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएँ 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
1: And see the dais. How many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister and on the left by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on

0: on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वन टू वन बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं.
0: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry. If you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you. And he will see that you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: Yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना. तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज़्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से.
0: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable. The young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable. So even, during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and in mingles with them and what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है.
0: Yes.
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहाँ जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी.
0: Yeah.
1: है ना?
0: And see, who expected that 3.5 crore people are going to get jobs in India? Right? The implementation has already started. 15 lakh have already got it. Today they'll be, it will be confirmed for them through the press of that button by the Prime Minister. And then over the year, means over a period of time, 3.5 crore people in India will be employed. They'll be having the job under this Viksit Bharat Rozgar Yojana, the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And Ministry of Labour, you know, they have always, the Labour and Employment, they have always carried out these Rozgar Melas, you know, even in the past. So through that, they have generated so much of employment for people who have not had any jobs. And though they get a meager amount, some may get very meager amount, some get a good job, but it helps them. At least they don't starve. They have, they get two meals a day. They're able to earn enough to get two meals a day. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रो, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा, अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी. और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया. नहीं,
0: yes.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार.
0: So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and is saying, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and. It's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा.
0: Yes.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी. बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं. और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा. और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो. नहीं,
0: या आई थिंक एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, दे आर ऑल इन अटेंशन, एंड आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग विद अदर डिग्निटरीज. ही विल बी टेकिंग हिज सीट ऑन द डेस, एंड वंस ही कम्स इन द प्रोग्राम विल बिगिन. ही विल बी फेलिसिटेटेड विद अ बुके बाय वन ऑफ द बेनिफिशियरीज. That will be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
3: एक बार
2: जोरदार तालियां हो जाए. देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का.
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें.
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन.
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the desk.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
0: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
1: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
2: A अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
1: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
0: And now the welcome remarks.
2: एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: By Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
2: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
5: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो या

0: फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
1: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
0: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
2: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
4: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
5: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
6: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
4: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
6: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
5: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
6: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
5: डाइस पर
7: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे

और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी

युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसे पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा।
दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में
इसका महत्व बहुत बड़ा है।

ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं। और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप
अब वैकल्पिक नहीं है वो, ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे विकसित

0: भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे हिंदी में प्रीति मोहन और अंग्रेजी में डी एंड्रयू।
0: सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को

अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत योजना रोजगार के अंतर्गत रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 होने को है, आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म खानदानी शफा खाना में तुलसी कुमार और जुबीन नौटियाल को गीत के बोल शब्बीर अहमद के और संगीत पायल देव का।

श्रोताओं, आपको याद दिला दें, कल सुबह 7:30 पर आप सुन सकते हैं रायपुर में 19 जून को यूनिसेफ द्वारा आयोजित मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड्स की रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता रमाशंकर होंगे। चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत, अरिजीत सिंह शादाब और अल्तमश फरीदी की आवाज़ों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीत प्रीतम का। फिल्म है राबता।

0: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना,
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं TLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना

0: कन्याएं तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की। और मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रवेश की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि नियद निल्लानार योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में 31 योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभागों के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था से लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक शासन की योजनाएं पहुंचने से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार होगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ा जाएगा तथा आवश्यक दस्तावेजों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अवधि 15 दिन बढ़ा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत लिया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश के किसानों से बढ़ी हुई अवधि का लाभ उठाने और निकटतम सहकारी समिति में जाकर अपनी उपज बेचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार के उतार चढ़ाव से बच सकेंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुंगेली में वरिष्ठ नागरिकों से सौजन्य भेंट की। इस दौरान श्री साहू ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी दी तथा उनसे संवाद किया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पंजीकरण और जन कल्याण शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री अग्रवाल को नियुक्ति पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता को नई गति मिलेगी। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 और 21 जून को किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 10 ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच भी लगाए जाएंगे। इधर नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स ने मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह सुविधा मनोरोग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। विद्यार्थी 18 जून से 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 9425502353 पर तनाव, चिंता, काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकेंगे। महाराष्ट्र के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से रायपुर स्थित उनके निवास में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रित रहेगा। इसके तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 20 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए 10 हाईवा को जब्त किया है। उधर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के नेतृत्व में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने मिंगाचल नदी में बीती देर रात छापा मारकर रेत उत्खनन कर रहे JCB, पोकलेन मशीन

और चार वाहनों को पकड़ा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। उधर रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के चिरई पानी में कल रात दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती शाम आए तेज आंधी तूफान और बारिश के दौरान दो उद्योगों के बीच बनी एक दीवार अचानक गिर गई, जिससे पास ही झोपड़ी बनाकर रह रहे कुछ मजदूर उसकी चपेट में आ गए। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए 22 जून से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 3 जुलाई तक चलेगी। चयनित बच्चों को राज्य के निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से हज यात्रा के लिए सऊदी अरब गए 122 हज यात्रियों का पहला जत्था नागपुर पहुँच गया है। नई दिल्ली में स्थित छत्तीसगढ़ के ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 अभ्यर्थियों ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। और बालोद पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 टैंकर, मोबाइल फोन, खाली गैलन और 40,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से सुशासन का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने रबी विपणन वर्ष के लिए चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की अवधि 15 दिन के लिए बढ़ाई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया। रेलवे ने विशेष सेवाओं की व्यवस्था की। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर मानसून के प्रदेश में पहुंचने की संभावना जताई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, 7 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाज।
2: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
3: दोस्तों, परवरिश एक ऐसा विषय है जिसको लेकर एक परिवार में बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है। परवरिश केवल यही नहीं है कि उनकी जरूरतों को पूरा करें, बल्कि उनके अंदर एमए और समाज में एक आदर्श बना सकें। और परवरिश की पूरी जिम्मेदारी एक माता पिता की होती है। बच्चों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा कोई तोहफा है तो वो है पेरेंट्स, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े रहते हैं। कुछ अच्छा होने पर खुशियां बांटते हैं तो मुश्किल आने पर दीवार की तरह अपने बच्चों के लिए खड़े रहते हैं। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि किसी भी इंसान को उनके माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। परवरिश कैसी हुई है उसका आरोप और पुरस्कार दोनों माता पिता को ही जाता है। कई बार आपने ये वाक्य लोगों के मुंह से सुना भी होगा, जब कोई बच्चा गलती करता है तो लोग कहते हैं कि तेरे माता पिता ने तुझे यही सिखाया है। और जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो हम ये भी कहते हुए सुनते हैं कि इसके माता पिता ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। बच्चों को सीखना सिखाना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसकी न्यूनतम समझ माता पिता एवं अभिभावकों को होनी अनिवार्य है। इस समय के अभाव में वे बच्चों पर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब परिणाम अनुकूल नहीं आते, बच्चे बिगड़ैल निकलते हैं या उद्दंड हो जाते हैं या कहना नहीं मानते, तो फिर अपनी संतानों पर ही वे विश्वास खो देते हैं। उन्हें सबके सामने डांटते कोसते फिरते हैं। ऐसे में स्थिति सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ जाती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बच्चों के सुधार की संभावनाएं हाथ से निकल जाती है और वे अपने ढंग से मनमाने तरीकों से जीवन बसर के लिए छोड़ दिए जाते हैं।

0: आज के इस कार्यक्रम में इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं इस कहानी को जो माता पिता की परवरिश पर आधारित है।
1: एक मोहल्ले में एक शरारती बच्चा रहता था जिसकी शरारत से पूरा मोहल्ला परेशान था। उस बच्चे का नाम राजू था। बच्चे की शरारतें भी ऐसी थीं कि लोगों के झगड़े हो जाएं। राजू कभी किसी की साइकिल पंचर कर देता तो कभी किसी के घर की बैल बजाकर भाग जाता। हालांकि राजू इतना छोटा नहीं था कि उसकी शरारतों को नजरअंदाज कर दिया जाए। मोहल्ले वाले उसकी शरारतों से काफी परेशान हो चुके थे। राजू की शरारतों पर मोहल्ले वाले उसे डांटते थे और कभी कभी तो मार भी देते थे। राजू के पापा जब ऑफिस से शाम को घर आते तो राजू पड़ोसियों की शिकायत अपने पापा से करता कि आज बगल वाली आंटी ने उसे खूब डांटा, सब्जी वाली बुढ़िया ने झाड़ू मारी। राजू के पापा जब मोहल्ले वालों से बात करने जाते तो वे उन्हें ही खूब उल्टा सीधा सुना देते। राजू के पापा भी राजू की शरारतों से बहुत परेशान हो चुके थे। राजू के पापा ने खूब सोचा कि आखिर कैसे राजू को समझाया जाए कि उसकी शरारतें सभी को परेशान करती हैं और वह गलत कर रहा है। बहुत सोचने के बाद राजू के पापा ने फैसला लिया कि वे आज दिन भर राजू के साथ रहकर उसकी शरारतों में उसका साथ देंगे। दिन शुरू होते ही राजू की शरारतें शुरू हो गईं। सबसे पहले उसने बगल वाले शर्मा जी का अखबार छुपा दिया। जब शर्मा जी गुस्से से तिलमिलाते हुए बाहर आए तो राजू उन्हें देखकर खूब हंसे। राजू के साथ उसके पापा भी खूब हंस रहे थे। उन्हें देख शर्मा जी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शर्मा जी ने दोनों को खूब सुनाया पर दोनों हंसते रहे। जब दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा तो शर्मा जी ही गुस्से से पैर पीटते हुए अंदर चले गए। अब मोहल्ले वाले आपस में चर्चा करने लगे कि पहले तो सिर्फ राजू ही उनकी नाक में दम किए हुए था, अब तो उसका बाप भी शुरू हो गया है। राजू ने अपने पापा के साथ दिन भर खूब शरारत की। राजू के पापा ने

जिसके बाद बुढ़िया उसे मारने दौड़ती थी। राजू ने सोचा पापा भी वही शरारत करेंगे, लेकिन पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया। राजू के पापा ने कुछ और ही किया। जैसी ही बुढ़िया सब्जियों से दूर गई, तो राजू के पापा ने नजर बचाकर राजू के साथ उसकी सारी सब्जियां साफ की और ठीक तरीके से रेडी पर सजा दी। जैसे ही बुढ़िया आई और देखा तो वह बहुत खुश हुई और इधर उधर देखने लगी कि किसने यह काम किया। जब सब्जी वाली बुढ़िया की थोड़ी आंख लगी तो राजू के पापा ने उसकी टूटी चप्पल ठीक करवा कर रख दी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा तो उसकी खुशी से आंख भर आई। भगवान से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, जिसने भी मेरे लिए इतना किया उसे हमेशा खुश रखना। शाम तक राजू के पापा ने बुढ़िया की खूब मदद की, जिसमें राजू ने भरपूर साथ दिया। राजू को छिपकर ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज वह शरारत नहीं बल्कि मदद कर रहा है। दिन ढल गया था, बुढ़िया अपनी सब्जी की दुकान समेट रही थी। तब राजू के पापा उसके पास गए और कहा कि आपको यह नहीं जानना कि आज दिन भर जो हुआ वो किसने किया। बुढ़िया ने तत्काल कहा, हाँ मुझे जानना है कि किसने मेरी मदद की। तब राजू के पापा ने राजू को आवाज दी। राजू जैसे ही आया तो उसके पापा ने कहा कि यह सब इसने किया है। राजू को लगा आज फिर उसकी झाड़ू से पिटाई होगी, तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुढ़िया ने उसे कसकर गले लगा लिया और चॉकलेट भी दी। राजू बहुत खुश हुआ। राजू अपने पापा के साथ घर आ गया था। आज राजू चुप बैठा था। राजू के पापा ने पूछा, आज जो भी किया उसमें तुम्हें मजा आया? तो राजू ने जवाब दिया, मजा भी आया और चॉकलेट भी मिली। तब उन्होंने राजू को समझाया कि तुम जब दिन भर शरारत करते हो, लोग तुम्हें डांटते मारते हैं और तुम शाम को उनकी शिकायत मुझसे करते हो, लेकिन आज तुमने शरारत नहीं बल्कि उनकी मदद की, तो सभी ने तुम्हें प्यार किया और चॉकलेट भी दी। राजू सारी बातें समझ चुका था। आज के दौर के बच्चे बहुत समझदार हैं, बस संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज के दौर के माँ बाप अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। बच्चों को समय दें और उन्हें अच्छे बुरे की समझ के साथ संस्कार जरूर दें।

प्रिय श्रोता, परवरिश माता पिता की जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए पूरा करते हैं, जिसमें ये चीज महत्वपूर्ण होती है कि जीवन में उन्हें किस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। बच्चों का जो फर्स्ट स्कूल है उनका घर होता है, क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं कि उनके माता पिता किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि माता पिता उनके पहले शिक्षक होते हैं। माता पिता का आपस का प्रेम उनको बहुत सी शिक्षाएं देता है, किस तरीके से वो आपस में बातचीत करते हैं, उनका कैसा रिलेशनशिप है, और माता पिता ही उनके लिए उनके जीवन में एग्जाम्पल होते हैं और उसी के द्वारा वो भविष्य में एक अच्छा एग्जाम्पल बन पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सच बोलें तो आपको भी उनके सामने सच बोलने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार के अपशब्द अपने मुंह से ना निकालें तो आपको भी पहले उन आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। कई बार बच्चे अपने पिता को देखकर या अपनी माता को देखकर गलत चीज़ों को अपने जीवन में सीख लेते हैं और भविष्य में फिर वो उन्हीं चीज़ों को करते हैं, तो इसलिए माता पिता को एक अच्छा उदाहरण बनने की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे भी समाज में एक अच्छा उदाहरण

0: दूसरों के लिए बन सके।
1: तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपको अपने एक श्रोता जिनका नाम रामदेव प्रसाद है, जो कि नालंदा से है, इन्होंने एक कविता लिखी है, उस कविता से हम आपको रूबरू कराएं। तो आपने हमारा पिछला कार्यक्रम तो सुना होगा जो कि तलाक के ऊपर था, और ये कविता भी तलाक के ऊपर ही लिखी गई है। तो चलिए आइए सुनते हैं। भारतीय शादी है स्थाई, तलाक न है मानवताई। शादी एक अटूट संस्कार, अपना का पावे सुख सारा। कुवचन नशा पान जब धारण, कुवचन नशा पान जब धारण, तब ही तलाक छूता चरण। आपस में बोल वचन, आपस में बोल वचन मिठास, पति पत्नी में कभी ना खरास। जो जन कभी ना करे तलाक, उसका पति राम संपाक। राम देव बिनती कर जोरी, तलाक से ही अति दुख तोरी। तो श्रोताओ, सुना आपने। अगर आप भी हमारे साथ चाहते हैं कि कोई कहानी हम अपने कार्यक्रम में सुनाएं, तो आप उस कहानी को, उस कविता को हमसे साझा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पर हम आपसे बात करें, तो आप हमें हमारे इस पते पर लिख भेजें।
2: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़िया, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार। जी हाँ, संध्या 6:50 पर हर मंगलवार और शुक्रवार। तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे 305.81 मीटर बैंड यानी 981 किलोहर्ट्ज पर। जी हाँ श्रोताओं, 305.81 मीटर बैंड यानी 981 किलोहर्ट्ज पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे
1: हो? हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित।
1: हाँ, कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में आप सुन सकते हैं रात्रि 9:15 पर। आइए आपको याद दिला दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:21 पर सुनिएगा किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल चक्र परिवर्तन हेतु श्री अन्न की खेती। हेलो चौपाल में सुनिएगा लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग। रात्रि 8:15 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगी छाया चंद्राकर। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। साथ ही आप सुन सकते हैं रात्रि 9:25 पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल।

0: लाल जी भाई राम राम।
1: राम राम समित भाई, और संगे संग चौपाल सुनैया हमर जम्मो संगवारी मल्ला हमर दुनों के
0: राम राम।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
6: आँखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको।

0: पद्धति से बहुत कम दरों में।
1: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
0: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 सालों से निरंतर सेवा में।
0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
3: छत्तीसगढ़
2: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत, सुरक्षित भविष्य।
4: लाल जी भाई, हाँ। का बात है भाई, बड़ दिन ले बात तोर ले मुलाकात हुआ थे, और सब बने बने ना।
5: समित भाई, ऐसे है कि जो खेती किसानी के काम उतर थे ना, इसमें समय नहीं मिले, और जेकर ले मेल मुलाकात नहीं हो पावत रही से, और संगे संग का है कि अभी गर्मी चलत रही से, अब ऐसो गर्मी है तो मनमाने रही से, है ना, घर ले निकले थोरकिन भी मन नहीं करत रही से, ये दे अब थोरकिन बादर है, उमर घुमर के आवत है, तब एक घर ले निकले के मन होते, और घर ले निकले के मन होते संगे संग कोनो जगह एक कनिक फुहार घलो चलत है, तो ये दाज तोर से मुलाकात हुई से भाई।
4: अब देख भाई, एकदम सिरतोन बात ते कहे हवस। लाल जी भाई देख, गर्मी के मौसम में हमन तो सब हला कान हो जातन, सिरतोन बात हवे, लेकिन देख खेती किसानी की अगर बात करे जाए, है ना, तो जो ये जो मौसम रहते ना बड़ महत्व वाला रहते, है ना, काबर की ये बेरा में हमन का करथन कि खेती किसानी मा गहरा जुताई कर सकथन, जेकर ले हमर जो खेत के माटी में रहते वो नीचे ले ऊपर हो जाते, और एकर ले का होते कि जो हानिकारक कीड़ा रहते, अंडा रहते, ओकर लार्वा रहते, फफूंद, और तो जो खरपतवार के बीज जो खेत में पड़े रहते वो का होते कि तेज धूप में मर जाते, और संगे संग देख का है कि हमन ला ये टाइम में माटी ला भुरभुरा करके समतल कर लेना चाहिए, और यही बेरा में माटी के जांच घलो करा लेना चाहिए, जेकर ले हम अल्ला पता चल सके कि माटी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, जेला हमन खातू डाल के वो कमी ला दूर करके अपन पैदावार ला बढ़ा सकत हन।
5: ये तो बहुत सुघर बात कहे समित भाई। देख का है कि खेती किसानी के बूता है 12 महीना चलत रहते, और हर मौसम के खेती किसानी के अपन अपन ढंग रहते। गर्मी में जैसे तैयारी के बात कहन है ना, तो वैसने खेती किसानी के काम बूता में जो काम महत्वपूर्ण रहते, जेकर माध्यम से हम फसल के उत्पादन ला बढ़ा सकथन। अभी अभी दे बोनी के समय आ गए है ना, तो बीजा भत हम अल्लाह अपन देख करके रखन, बीजोपचार करन, और संग में थोड़किन जरैया वा के देख ले रहन। अब तो लगभग हमर जम्मू किसान संगी मन खेत खार के साफ सफाई और मेड़ पार के जो बनई हैं ओला कर चुके हैं, लेकिन हम देखथन भाई समित की लगातार जैसे हम धाने की फसल लेथन या एक ही प्रकार के फसल लेथन, एकर ले जो हमर माटी है एकर जो उर्वरा शक्ति वो कम हो जाते, ऐसन में एक ठन नाम सुरता थे फसल चक्र के, जेला अपना के हमन ज्यादा ले ज्यादा लाभ ले सकथन और अपन माटी घलो सुरक्षित रख सकथन।
4: हाँ लाल जी भाई, ते बड़ सुगर बात कहे आवस। और देख फसल चक्र का होते कि जिमें फसल चक्र जब हमन करथन ता एमें एक नाम आते कि श्री अन्न के खेती, जेला हमन मोटा अनाज या मिलेट्स घरों कहथन, है ना, जेमें का है कि बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, जो कि फसल चक्र पर बड़ काम के होते, है ना, काबर की एकर ले माटी के उर्वरा बढ़ जाते, और साथ में का है कि जल के जो संरक्षण करे मा ये बड़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, और संगे संग जो कीट और जो बीमारी वाला जो कीट पतंग रहते उनकर मन के जो चक्र रहते ओला ये तोड़े बर एक सुघर विकल्प हवे। और देख भाई, ये का है कि हमार जो छत्तीसगढ़ के अगर बात करबो तो हमार छत्तीसगढ़ के जलवायु में श्री अन्न के खेती बड़ लाभ के हो सकत हवे।
5: हाँ समित भाई, वैसे देख कतको नकन ऐसे कीड़ा मकोड़ा रहते जे हर जैसे जे धान में होते ते हम मोटा अनाज में नहीं हो या दलहन में नहीं हो, है ना, तो एकर ले का है कि वो जो कीड़ा है ओला खाए बर कुछ नहीं मिले तो एकर से भी मरते, तो ये भी फसल चक्र के एक ठन फायदा है। और फसल चक्र परिवर्तन में जो मिलेट्स है के कई किस्म के लाभ हवे, जैसे कि इमें धान और गेहूं के तुलना में कम पानी के जरूरत पड़ते, जेकर कारण से माटी ला प्राकृतिक रूप ले नमी और आराम घलों में।

0: मिलते हैं, है ना भाई। और आराम कर ही माटी है तभी तो बढ़िया उपजाऊ बनी भाई,
1: बनी
0: है ना। एकर ले कम लागत में अधिक मुनाफा होते हैं, काबर की एकर जड़ हर गहरा होते हैं, जे हर जमीन ले पोषक तत्व ल खींच के माटी ल मजबूत बनाते हैं। संगे संग धान और अन्य प्रकार के जो फसल है जे श्री अन्न लगाए ले हानिकारक कीट और फफूंद के चक्र टूट जाते हैं, जेकर बारे में अभी हमन बात करत रहे हैं, है ना। तो ये प्रकार से श्री अन्न लगाए के बहुत फायदा है।
1: और देख लाल जी भाई, ऐसे कि जो श्री अन्न के फसल चक्र में हमार जो सफलता भर हमला चाहिए कि जो खरीफ के फसल ला कोदो हो गए, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रबी भर का है कि हमला सावा या कंगनी कर सकत हन। मतलब का है कि रबी फसल के साथ में ये लगा सकत हन और खरीफ के साथ में और ज्वार बाजरा ला लगा सकत हन।
0: हाँ समित भाई, अब बात आते एकर खेती तैयारी के कहना चाहिए तो एकर बर माटी ल बने समतल और भुरभुरा बना लेवन और 2-3 बार बने जोत के पाटा चला के ओमें सड़े हुए गोबर के खातू है, वर्मी कंपोस्ट है, इला डालना चाहिए। बुआई के बेरा के बात करन त जून ले जुलाई के बेरा में करे जाते, जबकि कुछ एक हिस्सा में फरवरी मार्च में घलो बुआई करे जाते। और एक बढ़िया बात है भैया, अभी चलत है खेत बचाओ अभियान।
1: हाँ।
0: और ये खेत बचाओ अभियान में हमारे वैज्ञानिक मन बताते हैं कि जोन भुइयां हैं वो लगातार रसायन के उपयोग ले कठोर हो जाते, उकर उर्वरक शक्ति जो है खत्म हो जाते, तो ओला बचाए पर हमला प्राकृतिक खेती कोती आगू बढ़ना जरूरी है। और प्राकृतिक खेती पर हमला आगू बढ़ना है तो गोबर के खातू, वर्मी कंपोस्ट, है ना, हरी खाद, एकर उपयोग करना बहुत जरूरी है।
1: अब देख भाई, ऐसे ही कि अगर जब बीज के मात्रा की अगर बात करे जाए तो लाइन से बुआई करे पर 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होते। और देख सिंचाई की हमन बात कर रहे हैं, वैसे तो एला कम पानी की जरूरत रहते और वर्षा के जल एक पर्याप्त रहते, अब कई बार देखे माथे कि अभी बारिश नहीं होते, वही स्थिति में का है कि हमला 1 या 2 सिंचाई एक बार कर सकत हन। तो देख ऐसे भाई कि जो श्री अन्न के जो फसल है ना वो कब साथ में कहा है कि दलहन के फसल भी हमला लगाना चाहिए। और दलहन के फसल में जैसे कहा होते कि मूंग हो गए, चना हो गए, सोयाबीन, ये सब ले अच्छा होते। काबर कि देख दलहन के फसल हमार माटी के नाइट्रोजन ला खींचे नहीं, बल्कि कहा है कि प्राकृतिक रूप ले बढ़ाए के काम करते। और जैसे कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमार फसल के पैदावार बढ़ कदीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही है।
0: तो समित भाई गोट बात तो होबे करी, अभी सुनथन ये संदेश।

0: एकल उपयोग प्लास्टिक छोड़ें, प्रकृति से नाता जोड़ें। आज की छोटी पहल कल का स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य बने। कपड़े या जूट का थैला अपनाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान निभाएं।
1: छत्तीसगढ़
0: पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनहित में जारी, प्लास्टिक मुक्त भारत सुरक्षित भविष्य।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय,
3: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
4: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
3: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
4: 47 सालों से निरंतर सेवा में
3: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
5: लाल जी भाई, एक कहावत है कि जल है तो कल है।
6: बिल्कुल,
5: जिला ध्यान में रखत हुए जल के संरक्षण हमला करना चाहिए। जल के संरक्षण मतलब का है, पानी के हर बूंद के हमला चतुराई के साथ में उपयोग करना चाहिए और उला बर्बाद होए ले बचाना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक हमर जो भुइया है वो में का है कि 1% पानी ही पिए बर उपयुक्त हवे, जेकर खातिर हमर मन के जिम्मेदारी और बढ़ जाते कि हम अनेकर संरक्षण करन और जेकर ले का है कि हमर जो अवैया पीढ़ी है ओला हम उनकर मल्ला ओमल्ला हमर भविष्य जो है ओमल्ला सुरक्षित बना के देवन।
6: समित भाई, ऐसे है कि जब पानी कमी होते ना तब पानी की सुरता आते, ये अभी बरसा का मौसम लगैया है ना, छत के पानी वाटर हार्वेस्टिंग करके इकट्ठा करन और एकर ले का है कि जो हमर भुइया है एकर जल स्तर में सुधार होही और साथे साथ यदि हम पानी के बचत करबो तो अवैया बेरा में जो पानी के समस्या है एकर ले हम बांच सकथन।
5: अब देख ला

0: जी भाई, ऐसे है कि गोट बात तो होबे करी, पर अभी का है कि हमार जो संगवारी मन है ओमन ला बेर इंतजार होई हलो चौपाल, जे में आज हमन लेकर आए हन लाख लगाएं लाखों कमाएं और जीवन समृद्ध बनाएं, ये विषय में जानकारी। विशेषज्ञ है डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पांदा जिला दुर्ग, और गोट बात करे हावे हमार लालजी भाई है। प्रस्तुत करता है शशि प्रकाश पांडे।
1: किसान संगवारी हो, आजकल हमर खरीफ फसल के तैयारी चलत है। ये बीच में कहूँ हम अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करना चाहतन, ता आज के क्रम हेलो चौपाल हर आप मन बर लाभकारी है, जेकर विषय है लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं। और आप मन के जिज्ञासा और समस्या समाधान खातिर विशेषज्ञ है डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पांदा दुर्ग। प्रस्तुत करता शशि प्रकाश पांडे, संचालन करत हूँ मैं यानी लालजी साहू हर। सबले पहली डॉक्टर साहब के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, राम राम।
2: जय सिया राम।
1: हेलो, हेलो चौपाल।
3: हेलो चौपाल,
1: कौन बोला तो कहाँ बोला तू भैया?
3: मैं लखनपुर का वर्धल बोला था भैया, दानी राम चंद्रवंशी।
1: हमारे कार्यक्रम में आपके स्वागत है। आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहत हो आप मन?
3: ये लाख की खेती पर विषय में बोला था, आज के प्रोग्राम है भैया, तो कौन से झाड़ में लाख की खेती करे जाते और हर बीज कहाँ मिली है, तो यही बात पूछे लगा है भैया।
2: चंद्रवंशी साहब, लाख एक दो प्रकार के होते, एक ठन रंगनी लाख या परसा लाख की थन जो परसा और बोईर में होते, और एक ठन कुसमी लाख की थन जो है कुसुम बोईर और सेमिया लाता में होते। और एकर बीज जो उन्हें जो पहली से लाख के खेती करत है ओकर मन के द्वारा आप ला प्राप्त हुई। लगभग हमर छत्तीसगढ़ में जतका ट्राइबल वाला ब्लॉक है जहाँ जंगल है वहाँ दोनों प्रकार के लाख करे जाते, और आप ला फिर भी बीज की नहीं मिल पाते तो आप जो उन्हें अपन नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र या आप अपन जिला के फॉरेस्ट विभाग से पूछू, वो आपके लिए बीज की व्यवस्था निश्चित रूप से कराई।
1: हेलो, हेलो चौपाल।
4: हाँ भैया जी, नमस्कार।
1: नमस्कार भैया, कौन बोला थो, कहाल बोला थो गा?
4: हाँ मैं मानवेंद्र साहू बोला थो, गर्रा पार बांधा बाजार। लाख की खेती अपन ला करना है तो कैसे ढंग के करन, और कौन कौन वृक्ष हमें पाए जाते लाख है, का बारे में जानकारी लेना रही।
2: साहू जी, लाख की खेती दो प्रकार के होते, रंगनी लाख और कुसमी लाख। रंगनी लाख जो है आपके परसा और बेर में होते, और कुसमी कुसुम बेर और आपके सेमिया लातम होते। तो ये कर सबके अलग अलग तैयारी करे लगते हैं। जैसे रंगनी लाख के बात करबो, सबसे ज़्यादा परसा के वृक्ष है, तो ये माँ कम फरवरी मार्च के महीना में पहली पेड़ के काट छाट करे लगते, कार की लाख जो होते वो एक छोटे से महिम कीड़ा होते वो कर द्वारा बनाए जाते। तो हमला जत के नवा टहनी मिली और वो जत के कोमर रही जत के लंबर ही उतके हमार लाख के कीड़ा उकर से रस चूसी अपन जीवन में अपन संख्या बढ़ाई और ज़्यादा लाख बनाई। तो पहली काट छाट करना है, काट छाट करे के बाद उमा बीज जेला बीहन की थन लाख लगे वाला जो सुनहरा कलर के जो लाख है ओला उमा बीज बांधे लगते, उमा सिस्टी मेस के लाइलोन जाली लगा लगते, और ओकर बाद ओला 21 दिन लगभग अधिकतम 21 दिन और सामान्यतः ठंड में ही 21 और बाकी समय जैसे वर्षा ऋतु है वो समय आप जो है ओला 15 से 20 दिन में निकाल सकते हो, और ओला निकालना जरूरी है। और निकाल के बाद वो छील के बेच दू, और ओकर बाद आप ला जोन बरसात की वजह से या लाख के खेती में कीड़ा बीमारी लगते ओकर बार आप ला दवाई के भी छिड़काव करना है, ओकर लिए गटूरी स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ी। ये प्रकार से ये लाख रंगनी लाख जो है जो हम हाँ बरसात में लगाबो जिला कतकी की थन वो कार्तिक महीना में अक्टूबर नवंबर में तैयार हो जी, वो समय एक काट का ये फसल के कटाई करना है, और कटाई करे के बाद उकर छिलाई करके वो बाजार में बेच देना है। और एक फसल में बैसाखी होते जो ना बैसाख के महीना में लगभग अप्रैल मई में तैयार होते, वो समय एला काट, सेम विधि है, एला काट के आप बाजार में बेच सकते हो। और छत्तीसगढ़ में पलास की खेती में एक ठन पलास वाला लाख की खेती में एक ठन फायदा है, जिसे जेला हमन कच्चा लाख भी की थन, ये लगभग मार्च एक महीना में जब छत्तीसगढ़ में बहुत बिहाव वहाव के समय रही थे, वो हमार संगवारी किसान संगवारी ला जो पैसा का आवश्यकता रही थे, तो वो समय भी कच्चा लाख ला वो काट के बेच सकते। ये तरीका से आप खेती के अलावा लाख के खेती करके एक पेड़ के माध्यम से आप आराम से 400-500 से लेकर 5000 तक के रुपया अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हो।
1: हेलो हेलो चौपाल,
5: राम राम का जय जोहार।
1: राम राम चौपाल, राम राम भैया, कौन बोला थो, कहाल बोला थो गा?
5: मैं पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता बोला था, संगवारी।
1: आपके स्वागत है भैया, और आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
5: अब ये है कि अब लाख की खेती तो हमारे को चीजें शुरू नहीं हुआ है, अब ये सोचा था कि खेती कैसे कर जाए और लाभ कैसे हो है।
1: हमारे विशेषज्ञ आप जानकारी देवत है।
2: गुप्ता साहब, आपके लाख दो प्रकार के होते, रंगनी और कुसमी। रंगनी लाख परसा में और बोईर में होते, और कुसमी लाख कुसुम में, बोईर में, और आपके आसानी से सेमिया लता में। तो आपके गांव में, आपके पास, आपके खेत में या जंगल में कौन कौन से ये वैसे पेड़ उपलब्ध है आपके पास?
5: अभी इतनी तो अभी हमारे को नहीं है सर जी, अभी
2: तो आप जो
5: राम जिला मैदानी इलाका है।
2: अच्छा, तो आप सेमिया लता के खेत के द्वारा लाख के खेती करे लगी, सेमिया लता से कुसुम लाख की खेती होते, आप जो उन्हें सबले पहली अप्रैल मई के महीना में आप जो उन्हें बीजा जुगाड़ लू, और बीजा जुगाड़ के
5: बीज कहाँ से मिली सर जी, एक बीज कहाँ से प्राप्त?
2: एक बीज आप ला आसानी से जो हमार भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान झारखंड रांची है, वहाँ से रांची झारखंड वहाँ से आप ला मिल जाए। और आप
5: कृषि विभाग उपलब्ध का सर जी
2: ला? नहीं, कृषि विभाग
5: पर ही बोला,
2: कृषि विभाग के बजाय आप अपन जिला के, कौन से जिला है आपके?
5: कबीरधाम जिला।
2: कबीरधाम जिला आप अपन कृषि विज्ञान केंद्र में चल दू, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र आपला आसानी से रांची से बीज मंगा के दे दी आपला, आपला बीज के पैसा जमा करे लगे एडवांस में। पौधा लगा लगते, ये पौधा एक से दो साल में तैयार होते आपला। अच्छा। ये लगातार उकर बाद आपला 10 साल तक, 8 से 10 साल तक एक उत्पादन देवत रही।
5: तब तो किसान मतलब बहुत उपयोगी लाभप्रद है सर जी।
2: हाँ बिल्कुल लाभप्रद है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है, कुछ बाध्यता भी है। ये वाला काम सिर्फ घेरा वाला और सिंचित जमीन में ही हो सकते, और आप बाचे जगह में लाख लगाए के बाद लाख सामान्यतः पौधा से पौधा की दूरी लगभग 1 मीटर और कतार से कतार के बीच 0.5 मीटर, उकर बाद फिर 2 रो के बाद फिर 1 रो से दूसरा रो के बीच 2 मीटर, ये प्रकार से गड्ढा खन के पौधा के रोपण करे जाते। पौधा के लिए झिल्लीम तैयार होते, तो जो 10 इंच बाई 6 इंच के जो झिल्ली होते, वो झिल्ली में आपला माटी, गोबर खातू और रेती, दो रेशियो 1:1 अनुपात में मिला के पौधा तैयार करे लगी, और वो पौधा ला आपला बरसात में रोपे लगी, तो ओकर से 1 साल के अंदर तैयार हुई, फिर वो मैं आपला लाख के बीज लगा के लाख के खेती आप कर पाऊ।
5: जमीन नुकसान वगैरह थोड़ा
2: हो? नहीं नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं हो। सेमिया लता 1 एकड़ में मिनिमम आपला आज के समय में बीज आप बेचू तो 2 से 2.5 लाख रुपया एकड़, बीहन अगर बीज के रूप में बेचू तो बोला छील के बेचू तो वो आपला 1.5 से 2 लाख रुपया प्रति एकड़ 6 महीना के अंदर आपला मिली।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जानकारी दे।
1: डॉक्टर साहब, ये बताते हो कि लाख ला तैयार होने में कतेक दिन के समय लगते, वेला पेड़ ले अलग करत बेरा का सावधानी रखना चाहिए?
2: लाख जिसे मैं कुसमी बोले हो, कुसमी लाख 6-6 महीना में एक एकड़ पहली फसल होते, जेला घनी की थन, जेला जून जुलाई के महीना में बांधता ना, एक घन में जनवरी फरवरी में ये काटे के लिए खोजते, और दूसरा फसल होते एकर जेला हमन हा जेठवी की

0: देखथन। एला हमन ह जनवरी फरवरी में लगाथन और ये ह वापस जून जुलाई में तैयार हो सके। ये तरीका से एक साल में लाख के हमला दो फसल प्राप्त होते। हमला काट छाट करे समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से भी जो काटा था वो डाली फलकना नहीं चाहिए और वहाँ से काटन जहाँ से हमला आसानी से फिर वापस कोमल टहनी तना मिले चालू हो जाए वो बढ़वार करके अगले छः महीना और कुसुम के पेड़ में लगभग साल से डेढ़ साल के भीतर पुनः लाख के फसल लेके लायक हो जाए। ये ला काटे के बाद एक छावदार जगह में संरक्षित रख लो और जैसे ओकर जो टहनी है जेमा लाख लगे है वो है जब सुखा जही चिपक जही डंडी में तो वो समय चाकू के द्वारा एला आसानी से छील के एला अलग करे जा सकते। एला छीले के बाद अलग करे के बाद अगर आपके पास आसपास में लाख के सफाई वगैरह के व्यवस्था है तो आप वहाँ जाके अपन लाख ला सफाई कर सकते हो और धुलाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो जहाँ तक संभव है आप अधिकतम 15-20 दिन के अंदर एला बेच दो ताकि एकर प्रसंस्करण हो सके। संगवारी हो लाख में ही ध्यान रखना है कि लगभग लाख बहुत कीमती चीज़ है। जो बीज के लिए काटा था तो वो समय लाख में सुनहरा कलर होना चाहिए और दानेदार होना चाहिए जेकर से आपके काटे के 2-4 दिन से लेकर हफ्ता दिन के अंदर उमा आपके मादा कीट या मादा और बच्चा कीट निकले के चालू हो जाए ताकि उकर अच्छा से सदुपयोग हो। यही बात ला काटे के समय अगर बिहन के लिए या बीज के लिए काटा थन तो ये भी ध्यान रखना है कि जब तक उकर कलर चेंज नहीं हुए तब तक ओला नहीं काटना है। और अगर हम अपने लिए बीज बना थन या अपन आस पास में वो बीज ला दे थन तो जब सुनहरा कलर हो गए और उकर बाद आप एक छोटे से लगभग 10-15 ग्राम के लाख ला काटो और काट के लाके अपन घर में सफ़ेद रंग के कागज में ओला कोनो टेबल में करके रख दो। उमा जैसे उमा से आपके छोटे छोटे कीड़ा निकले चालू हुई तो आप ला त्वरित होकर कटाई करके ओला जहाँ स्थानांतरित करना है जो पेड़ में वो पेड़ में स्थानांतरित करना है। संगवारी हो परंपरागत लाख के खेती ला हमला खत्म करे लगी कार की एकर से पौधा ला आराम नहीं मिल पाए और चोरी हारी के भी समस्या रही थे और एकर कोनो देख रेख नहीं करे तो आदमी उकर चक्कर में लगभग अंधाधुन लाख के समय बेसमय कटाई कर लेते और उकर से जो हमला वैज्ञानिक तरीका से जो हमला खेती करके उकर से ज़्यादा लाभ कमाना चाहिए वो लगभग उकर 25% या लगभग आधा ही मिल पाते। तो संगवारी हो आज का शासन है लगभग प्रशिक्षण के या उकर जानकारी संबंधित बहुत सारा सुविधा आपके पास उपलब्ध करा है तो वैज्ञानिक विधि से ही लाख के खेती करो। एकर से आपके पौधल भी आराम मिली आपला उत्पादन भी ज़्यादा मिली और आपके उत्पादन ज़्यादा हो से आपला निश्चित रूप से ज़्यादा लाभ मिली कार की लाख की खेती में समय बहुत कम लगते। आप फसल के खेती करत हो उकर साथ एला भी कर सकते हो। आपके खेत के मेड़ में या जहाँ भी लाख है उकर द्वारा आप लाख की खेती आसानी से कर सकते।
1: हेलो हेलो चौपाल।
2: हेलो चौपाल। हाँ सर नमस्कार।
1: नमस्कार भैया कौन बोला था कहाल बोला था गा?
2: मैं ग्राम सैया मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी बोला था सर।
1: आपके स्वागत है भैया हमारे कार्यक्रम में और आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
2: ये छत्तीसगढ़ के कौन कौन जिला में लाख के खेती हो सकते सर और वो प्रमुख किस्म कौन कौन है?
0: छत्तीसगढ़ में पूरा भारत में दो प्रकार के लाख होते रंगनी और कुसमी। और आप जैसे आप जंगल क्षेत्र में जाओ मतलब रायपुर और दुर्ग सीमांकन के बाद इमा थोड़ा आसपास में लाख की खेती नहीं है। ओकर बाद लाख की खेती लगभग सभी जिला में है। जैसे राजनांदगांव जिला में जाबो तो अंबागढ़ चौकी मानपुर मोहला से लेकर वो पूरा दंतेवाड़ा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सब तक है। और ये महासमुंद जाबो तो महासमुंद में महासमुंद से लेकर वो पूरा उड़ीसा बॉर्डर उड़ीसा तक पूरा है। और ये बिलासपुर से आगे बढ़वो तो बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर और बाद जत का मध्य प्रदेश छठे कहे का मतलब ये है जहाँ पे हमार जंगल क्षेत्र है वहाँ लाख की खेती परंपरागत तकनीक से बहुत पहली से करे आते और बहुत अच्छा करते। जैसे कोरबा बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, अंबिकापुर बहुत अच्छा है, जगदलपुर में बहुत अच्छा है, और नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंटा, सब जगह बहुत अच्छा खेती होती।
2: ओकर प्रजाति कौन कौन से?
0: रंगनी और कुसमी। रंगनी जो उन्हें परसा में और बोईर में, और कुसमी जो है कुसुम मा, बोईर मा, और आपके सेमिया लता मा, ये मा होते।
1: हेलो, हेलो चौपाल।
3: हाँ, राम राम भैया।
1: राम राम भैया, कौन बोला तो कहाँ बोला तो गा?
3: मैं आप भाईपुर से राम प्रसाद मस्त बोला भैया, बालो जिला वाला, बालो जिला से।
1: आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भैया, आओ बताओ आज के कार्यक्रम ले जुड़े का जानना चाहते हो आप मन?
3: मैं यहाँ ये जानना चाहूँ भैया जी, खेत में मतलब 5-7 थान परसक पेड़ है, तो मैंने एक थान में लाख पकड़े है, इसमें थोड़ा फैलाना है मतलब, और तो जानकारी मुझे चाहिए सर भैया जी।
0: राम प्रसाद भैया, परसा माँ लाख लगे है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, ये महीना जून चला थे, हो सकते आपके जो लाख लगे है वो मसे 15 आज लगभग 20 जून हो गए, या कीड़ा निकले चालू हो गए हुई, या एक आध हफ्ता अंदर निकल जी हुआ, तो ओमा जत का लाख लगे है ओमा आपके पास 7 पेड़ में से जो माँ ज्यादा लंबा लंबा कोमल वाला टहनी हुई ओमा ओला काट के बांध दो, करके आप अभी त्वरित तो आपके पास नायलोन जाली सिस्टम में कुछ नहीं मिले, तो आप काटे के समय यही ध्यान रखू कि वो फल कह झन ओला, जो सरोता आते सिकेटियन ना वो कर से डाली मल्ला काट काट के, जो मैं ज्यादा हेबा कोमल टहनी वो वाले पेड़ में ये साल डाल दो, ओकर बाद ये पेड़ के जत का काटे हो वो मैं ध्यान रखूँ कोनो मेर फल कह जान, और पौधा ला आप छाता नुमा दे के प्रयास करो, और जहाँ तक पेड़ में चढ़ सकता हो वहाँ तक के बाद ओकर ऊपर उपरहा हुआ थे तो उलवहल काट के बाद पेड़ हिल्ला करत ज़्यादा ज़्यादा टहनी मिले, ये प्रकार से आकार दे दो, और एक साथ ही अगले बार जैसे आपके फरवरी मार्च लगी तो बाकी पेड़ मन के भी इसने काट छाट कर दू, तो ये पेड़ में जो ना आपके कीड़ा तैयार हुई वो आने वाला समय में अक्टूबर नवंबर में या यही बरसात के आसपास आपला फिर बीज पर्याप्त मात्रा मिल जाएगी, तो आपके पास 7 पेड़ है तो 3 और 4 दो भाग में बांट लो, 3 में 1 साल करो, और उकर बाद 4 में फिर 1 साल करो, फिर दूसरा साल 3 ला आराम दो, ये तरीका से आप खंड प्रणाली करो, और आपके पेड़ के अगर साइज बढ़िया बढ़ने हुई तो आपला एक पेड़ से कम 8-10 किलो या 4-5 किलो लाख मिल जाएगी, वर्तमान में लाख के क्वालिटी के अनुसार आपला लगभग 600 से लेकर 1500 रुपये किलो के बीचों का रेट है, तो आप जितके अच्छा लाख धू उतके अच्छा आप रेट पाहू, एक साथ ही बीजा एक बहुत बड़ बाजार है लाख के बीज है, और आप कम अगर आपके पास है तो आप निश्चित रूप से लाख उत्पादक संस्था मन से जुड़ू या नेट में सर्च करूँ कॉल करूँ, और आप अपन पास बीज के मात्रा बताऊ तो जो ओला कॉमर्शियल रूप से बेचते छत्तीसगढ़ माओ हमार लगे बालाघाट के आसपास के जो व्यापारी मन है वो मन आपसे लाख ला लेके बीज के रूप में लेके दूसरा किसान ला उपलब्ध कराई।
1: डॉक्टर साहब ये बताते हो कि जैसे लाख तैयार हो जाते और तैयार हो के बाद बेचे के समस्या हमार किसान संगी मन कराते, तो एक बेचना कैसे चाहिए, एक बाजार व्यवस्था के बारे में बताते हो।
0: बहुत बड़े बड़े व्यापारी है छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, आप मन एक से निजी संपर्क कर सकता हो और सामूहिक रूप से करहू, जैसे एक ठन बात आते कि हमर ती रतका मात्रा है आप का रेट दू, तो जतके ज़्यादा मात्रा में आप बड़े व्यापारी ला लाख उपलब्ध कराहू उतके ज़्यादा अच्छा रेट मिली, साथ ही आप जितका शुद्ध रूप से लाख उपलब्ध कराहू जेमा कचड़ा झन रहा है, कीड़ा बीमारी लगे वाला झन रहा है, बढ़िया वजनदार रहा है, जेमा ज़्यादा से ज़्यादा लाख ओकर धुलाई के बाद बैठे तो आप ला निश्चित रूप से ज़्यादा फायदा हुई। संगवारी हो, लाख भी एक प्रकार के फसल है और एकर खेती होते, अगर हम ट्राइबल मरिथन या जंगल क्षेत्र मरिथन वहाँ परसा, बोईर और कुसुम पर्याप्त मात्रा में है, तो इला हमला अलग अलग भाग में बांट के अपन खेत में भी है और जो जंगल में है या आस पास चारागाह में, ओकर हम समुचित देख रेख के साथ कटाई छटाई बढ़िया करके अपन अलग वैज्ञानिक विधि के द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और

0: जब अधिक उत्पादन प्राप्त करबो तो हम अपन लोकल जो बाजार है, जिसे आप जो हूँ तो अम्बागढ़ चौकी असन छोटे जगह से लेकर बस्तर में हर जगह, ये बिलासपुर से आगे जाऊँ तो हर जगह लगभग छोटे व्यापारी भी एक उपलब्ध है, ओकर से संपर्क करके या आप मन के बीच से एक आदमी ला व्यापारिक रूप से तैयार करके आप लाख के व्यापार ला बहुत अच्छा तरीका से कर सकते हो। कार कि ये ऐसे फसल है जेकर विश्व स्तर में बहुत ज़्यादा मांग है। संगवारी हो आप मन देखत हो अभी बिजली उपकरण है और कंप्यूटर उपकरण है, बहुत अकन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है और बाजार है, दवाई बाजार है दवाई वाला। एक अलावा आपके पॉली से आपको जतका प्रकार के क्रीम और सौंदर्य प्रसाधन वाला सामान लगाता हो, सू पॉलिश लगाता हो, लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण है सोना चांदी के बाजार में देखा तो आप मन लाख, हर जगह लाख उपयोगी है। यहाँ तक के खेती में भी हमार फल अला संरक्षित करे बर, फल और सब्जी संरक्षित करे बर लाख के उपयोग होते। मिठाई में देखा तो लाख के परत चढ़ते, तो हमार जिंदगी लाख के बिना अधूरा है। और आपको ये भी बता देता हूँ बहुत दवाई के साथ साथ कई ठन पौष्टिक भोजन में भी लाख के उपयोग होते, लाख हाई प्रोटीन होते जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ये नेचुरल रूप से हमार पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद है। तो लगभग हमार जीवन के हर पहलू में लाख जुड़े हैं और लाख के बाजार बहुत बड़े हैं। और हमार मन के लिए बहुत गर्वक बात है कि हमार भारत लगभग अग्रणी देश में से है लाख उत्पादन में, और ओमा हमार छत्तीसगढ़ हुई भाई मन के लिए और ज़्यादा गर्वक बात है कि लगभग लाख उत्पादन में पहला दूसरा नंबर में पूरा देश में छत्तीसगढ़ अरे थे। हमला आज की आवश्यकता ये है कि हमार पास जौन पेड़ एकर संसाधन के रूप में है ओला हम संरक्षित करें। इला हमार तीर जौन परसा कुसुम बोईर के पेड़ है इला हमला संरक्षित करना चाहिए, एक और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा के लाख के खेती ला हमला बढ़ावा देना चाहिए।
1: हेलो हेलो चौपाल।
2: हेलो चौपाल, राम राम भैया।
1: राम राम भैया, कौन बोला तो कहाल बोला तो गया?
2: विक्रम कंवर बोला था भैया, ये सरेखा ग्राम गुंडरदेही ब्लॉक जिला बालोद ले भैया।
1: आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है भैया। वो आज के विषय ले जुड़े का जानना चाहता हूँ आप मन।
2: हाँ तो ये भैया लाख के खेती जिसे अपन करत हैं तो एक भैया बेचे और बिक्री वगैरह के का व्यवस्था रही थे, एक बारे में कुछ जानकारी चाहे रही से।
0: आपके जो लाख के है बीज और टीकर छिलाई के बाद छिली लाख जेल हम उनकी थन दोनों बिकते और दोनों जो है आप जौन भी जिसे आप बालोद के हो, आप बालोद से थोड़ा दूर कांकेर जाओ, कांकेर में बहुत अकन प्रसंस्करण इकाई है व्यापारी है, आप अच्छा किस्म का लाख धू तो सीधा खरीदी आपसे। और ओकर साथ ही कांकेर में हमार कुछ समूह है जौन मन हाँ बिहन लाख के खेती करते, आप अच्छा क्वालिटी के ओला बिहन दू बीज दू तो आपके बीज ला भी बेची, ये तरीका से आपके आसपास में दोनों के व्यवस्था है। आपला आपके जो परसा के पेड़ हुई है बोर के पेड़ हुई ओला लाख के खेती के हिसाब से संरक्षित करके बढ़िया गोबर खातू वगैरह डाल के बढ़िया ओकर आकार बढ़ाना है, ओकर काट छाट सही करत रहना है और ओकर से आपला ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है। और लाख के खेती ऐसे कम समय में ज़्यादा फायदा वाला खेती है, आपला खेती के साथ बहुत कम समय ली और आपला फायदा ज़्यादा दी।
1: आज के हेलो चौपाल में डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा दुर्ग, आप हमर बीच आए और हमर किसान संगी मन के जो समस्या और जिज्ञासा रही से एकर समाधान करो, ये खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जय श्री जय जोहार जय सीताराम।
1: किसान संगवारी हो, ये हेलो चौपाल के रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार के बिहनिया 11:30 to 12 के बीच होते, जेमे आप मन के खेती किसानी ले जुड़े अलग अलग विषय के जानकारी और समस्या के समाधान हमार विशेषज्ञ मन करते। तो अवैया शुक्रवार के आप मन के फोन कॉल के इंतजार रही, एकरे संग आज के हेलो चौपाल यही मेरा सिरावत है।
3: संगवारी हो, अभी सुनेन क्रम हलो चौपाल, जिमें आज आप मन बर लेकर आए रहें लाख लगाएं लाखों कमाएं जीवन समृद्ध बनाएं, ये विषय में जानकारी। विशेषज्ञ ने डॉक्टर ईश्वरी कुमार साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ कीट विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पांदा जिला दुर्ग, और ऑप्शन गोड बात कर रही ने लाल जी साहू, प्रस्तुत करता रही ने शशि प्रकाश पांडे।
1: और सर भाई अभी बेरा हो गए कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी मतलब बता देते ना आज के प्रश्न लिखो संगवारी हो कि लाख के प्रजाति के होते एक नाम बताओ। प्रश्न एक बार आओ, लाख के प्रजाति के होते एक नाम बताओ, और पाछू हफ्ता का पूछे गे रही तेला बता दे समित भाई।
3: पाछू हफ्ता हमन पूछे रहें कि उद्यानिकी विभाग ले संचालित योजना कौन कौन से हवे, और सही जवाब है समेकित उद्यान विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। और सही जवाब देवैया हमर संगवारी मन के नाम है देवरी भाटापारा ले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हव्य रजक, तन्नू रजक, ग्राम नागरकोरा ले झग्गर राम साहू, सुलोचना साहू, राजू लल्ला, प्रांजल बेबी आराध्या, ग्राम परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सुरोजना मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया, ग्राम बठीना ले बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, पार्थ कश्यप, राजेंद्र मनहरण वर्मा, बंटी और मुरली वर्मा, मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू, योगेश्वर साहू, राहुल साहू, नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, सीमा वर्मा, शारदा वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, दामिनी वर्मा, डोंगरगांव ले राष्ट्रपाल गजबीए, तन्मय गजबीए, राधिका गजबीए, बेबी अनिष्का, बेमेतरा ले सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा भेमलता, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रिजकांत सारथी। सही जवाब देवैया जम्मो संगवारी मल्ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
1: और भैया अब होते जाए के बेरा, त बता देथन काली के कार्यक्रम काली संध्या चौपाल में आज के बात के विषय होही महिला सशक्तिकरण और मशरूम उत्पादन, और संगे संग गीत संगीत तो होबे करी भाई। और संगवारी हो एक सूचना है कि हम अल्लाह खेद है कि प्रसारण जो है 7:36 ले 7:41 के बीच में थोड़ा से बाधित हुई से कारण से, तब बेरा हो गए जाए के। तो समित भाई जम्मू संगवारी मल्ला लाल जी,
3: समित के राम राम, राम।

किसान साथियों का कार्यक्रम चौपाल अभी आप सुन रहे थे मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म रॉकस्टार में हर्षदीप कौर और सपना अवस्थी को, गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत AR रहमान का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: घर आंगन ग्रामीण बहनी मन के मन पसंद कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक। घर द्वार, बारी बखरी के गोठ, स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्या के समाधान, सुघर गीत संगीत और कविता कहानी एक के जगह। औ तो अब तो हमार बहनी मन के सीधा भागीदारी फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम जोहार बहनी के संग मा। ता आपो सुनाओ संगी संगवारी मल्ला तको सुनाओ। घर आंगन प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के मंझनिया 1:30 से 2 बजे तक।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे हैं, आइए सुनते हैं इरशाद कामिल का लिखा गीत सुनिधि चौहान की आवाज में, जिसे संगीत से सजाया है संदेश शांडिल ने। फिल्म है चमेली।

लीजिए अब सुनिए फिल्म रॉय में मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर को गीत के बोल कुमार के और संगीत मीत ब्रदर्स और अनजान का।

चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं छाया चंद्राकर। लीजिए अब सुनिए नानक देव की रचना छाया चंद्राकर के स्वर में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत अभी आप सुन रहे हैं, लीजिए सुनिए प्रीति श्रीवास्तव की रचना छाया चंद्राकर के स्वर में।

सुगम संगीत, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत में। आज कलाकार थी छाया चंद्राकर और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को है। स्पोर्ट्स स्कैन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर से मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। पहले मुख्य समाचार। फीफा विश्व कप में सह मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। नौवें दिन अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से और ब्राजील की टीम हैती के साथ खेलेगी। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। ग्वांगडोंग में मेजबान चीन ए के हाथों हार के बाद विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक मिला। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चिली से होगा और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में। और नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फुटबॉल के साथ। फीफा विश्व कप के नवे दिन 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड और मोरक्को की टीमें आमने सामने होंगी। तीसरा मैच ब्राजील और हैती के बीच खेला जाएगा। चौथा मुकाबला तुर्की और पैराग्वे के बीच होगा। इससे पहले 8वें दिन भी बेहद दिलचस्प मुकाबले खेले गए। कतर को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने अपना मैच ड्रॉ खेलकर 1 अंक हासिल किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: हर पल धड़कने बढ़ाने और विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के रोमांच को आगे बढ़ाते विश्व कप के एक से बढ़कर एक मुकाबलों के बीच कनाडा ने वैंकूवर में अपने समर्थकों की तरफ से मिलते प्रोत्साहन के साथ कतर को एक तरफा अंदाज में 6-0 से करारी शिकस्त देकर विश्व कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत से उसने नॉकआउट राउंड में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। जोनाथन डेविड ने अपनी टीम के लिए हैट्रिक लगाई। इस विश्व कप में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के बाद एक मैच में 3 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कतर के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिले, जिससे उसकी टीम 9 खिलाड़ियों तक सिमट गई। कनाडा की टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया और ताबड़तोड़ हमले कर एशियाई दिग्गज टीम कतर को पूरे मैच के दौरान संभलने का मौका ही नहीं दिया। हाफ टाइम तक कनाडा 3-0 से आगे था। इस मैच में मेजबान टीम को गोल के रूप में एक तोहफा भी मिला, जब 75वें मिनट में मोहम्मद मनाई ने अपने गोलकीपर को चकमा देते हुए आत्मघाती गोल कर दिया। उधर ग्वाडालाजारा में लुइस रोमो ने दक्षिण कोरिया की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाते हुए गोल किया, जिससे सह मेजबान मेक्सिको 1-0 से जीत हासिल करके मौजूदा विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। मैच जब गोल रहित बराबरी पर चल रहा था, तब खेल के 58वें मिनट में दक्षिण कोरिया के गोलकीपर किम स्योंग ग्यू और डिफेंडर ली ग्यू ह्यू के बीच टक्कर होने से गेंद पेनल्टी एरिया के अंदर छूट गई। रोमो के पास ये सुनहरा मौका था और उन्होंने गेंद को आसानी से खाली नेट में डालकर गोल कर दिया, जो बाद में निर्णायक साबित हुआ। ये उस टीम के लिए एक बड़ी जीत है, जो 2022 में ग्रुप चरण में जीत हासिल करने में नाकाम रही थी। मेक्सिको के खिलाड़ियों ने मैदान पर जश्न मनाया। उधर एटलांटा में टेबोहो मोकेना ने आखिरी क्षणों में पेनल्टी को गोल में बदलकर न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया, बल्कि चेक गणराज्य के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ कराकर विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप ए में उसे एक महत्वपूर्ण अंक भी दिलाया। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम में 6वें मिनट में मिखाल सादिलेक ने चेक गणराज्य को बढ़त दिलाई। चेक गणराज्य जब जीत की तरफ बढ़ रहा था, तब थापेलो मासेका का लंबी दूरी का शॉट पेनल्टी एरिया में चेक प्रतिद्वंद्वी पावेल सुल्क के हाथ को स्पर्श कर गया। मैच से पहले राष्ट्रगान के दौरान आंसू बहाते हुए दिखाई देने वाले मोकेना ने 83वें मिनट में पेनल्टी स्पॉट पर कदम रखा और चेक गणराज्य के गोलकीपर मातेज कोवर के पास शॉट मारकर गोल कर दिया। इस ड्रॉ से दक्षिण अफ्रीका के भी अगले दौर में पहुंचने की संभावना बन गई है। चौथे मैच में इंग्लवुड में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी योहान मंजाबी के 2 गोल की मदद से स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी के मैच में बोस्निया हर्जेगोविना पर 4-1 से शानदार जीत हासिल की। मंजाबी ने मैदान पर उतरने के 3 मिनट बाद ही मैच के 74वें मिनट में एक शानदार वॉली शॉट लगाकर विश्व कप में अपना पहला गोल किया। बोस्निया के टेरिक मुहारे मोविच को खतरनाक टैकल के लिए लाल कार्ड दिखाए जाने के कारण उसकी टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। अपना दूसरा विश्व कप खेल रही इस टीम के पास अब भी नॉकआउट चरण में पहुंचने का मौका है। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: ये थी फुटबॉल की बात और अब चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को मात दी, वहीं अनमोल खरब हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। कैसा रहा भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: असम की 26 वर्षीय खिलाड़ी अश्मिता ने विश्व की 99वें नंबर की खिलाड़ी किम को 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-16, 21-18 से हराया। पहले गेम में अश्मिता और किम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और एक समय तक स्कोर 14-14 से बराबरी पर था। इसके बाद अश्मिता ने धैर्य का परिचय देते हुए लगातार 4 अंक हासिल किए और गेम अपने नाम कर लिया। पहले गेम की गलती से सीख लेकर किम ने दूसरे गेम में बेहतरीन शुरुआत की, वहीं अश्मिता दूसरे गेम की शुरुआत से ही बैकफुट पर नजर आई। अश्मिता एक समय पर 2-8 से पीछे थी, हालांकि अश्मिता ने शानदार वापसी करते हुए अंतर 16-18 तक कर दिया। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 अंक जीतकर अंतिम 4 में अपनी जगह सुनिश्चित की। इस साल BWF टूर प्रतियोगिता में ये उनका पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। अश्मिता चोटिल होने के कारण 3 महीने तक खेल से बाहर रही थी और उन्होंने मई में वापसी की थी। वापसी के बाद उन्होंने चाइना मास्टर सुपर 100 और मलेशिया मास्टर सुपर 500 प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था। अश्मिता कल फाइनल में जगह बनाने के लिए कोरिया की पार्क गा यून का सामना करेंगी। दूसरी ओर अनमोल खरब प्रतियोगिता से बाहर हो गई। विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर काबिज अनमोल अच्छी शुरुआत का फायदा उठाने में नाकाम रही और 1 घंटे तक चले मुकाबले में विश्व रैंकिंग में 36वें स्थान की खिलाड़ी और चौथी वरीयता प्राप्त हान कियानशी से 21-14, 15-21, 13-21 से हार गई। अनमोल के बाहर होते ही प्रतियोगिता में भारत की एकमात्र उम्मीद अश्मिता ही बची हैं। अब भारतीय बैडमिंटन प्रशंसकों की निगाहें कल होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में अश्मिता पर होंगी। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
0: चीन के ग्वांगडोंग में आज भारत को विश्व टीम स्नूकर चैंपियन

0: चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में मेजबान चीन ए के हाथों 2-3 से मिली हार से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबला 2-2 से बराबरी पर था और भारत के आदित्य मेहता निर्णायक फ्रेम में ली चंगजी के खिलाफ लड़खड़ा गए और खिताब के लिए हुए इस निर्णायक मुकाबले में पिछड़ गए। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने चंगजी के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। मेहता इसके बाद जू जियारुई से 34-66 से हार गए। डबल्स मुकाबले में आडवाणी और मेहता की भारतीय जोड़ी जियारुई और पैन यिमिंग से हार गई। आडवाणी ने एक बार फिर अपने सटीक खेल से भारत की वापसी कराई। 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियन ने जियारुई के खिलाफ 82-4 की शानदार जीत हासिल की, लेकिन निर्णायक फ्रेम में मेहता अपनी लय नहीं ढूंढ पाए और भारत को जीत नहीं दिला सके। अब चलते हैं हॉकी के मैदान पर। FIH नेशंस कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत का मुकाबला चिली से होगा। भारतीय टीम को इस मैच को जीतने का बेहद मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
1: टूर्नामेंट में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला हॉकी टीम निचली रैंकिंग वाली चिली के खिलाफ अपनी लय बरकरार रखना चाहेगी ताकि FIH प्रो लीग में वापसी की ओर अगला कदम रख सके। भारत ने पूल ए में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय टीम को अगले सत्र में प्रो लीग में वापसी के लिए नेशंस कप जीतना ही होगा। भारतीय टीम पिछले सत्र में 16 मैचों में सिर्फ 10 अंक लेने के बाद प्रो लीग में सबसे नीचे रहा और नेशंस कप में खिसक गया था। 8 देशों के FIH नेशंस कप के विजेता को अगले सत्र में प्रो लीग में जगह मिलेगी। मौजूदा रैंकिंग और फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा चिली पर भारी है। विश्व रैंकिंग में भारत 9वें और चिली 13वें स्थान पर है। सेमीफाइनल से पहले मुख्य कोच शोर्ड मारिन को कुछ पहलुओं पर काम करना होगा। 17वीं रैंकिंग वाली उरुग्वे को हराने के लिए भारत को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ड्रैग फ्लिकर दीपिका शानदार फॉर्म में है और 4 गोल कर चुकी हैं। नवनीत कौर, कप्तान सलीमा टेटे और लालरेम सियामी भी एक एक गोल कर चुकी हैं। भारत के लिए एकमात्र फील्ड गोल दीपिका सोरेंग ने किया है। भारत को अगले मैचों में और फील्ड गोल करने होंगे। इसके लिए फॉरवर्ड पंक्ति को मौके बनाकर फिनिशिंग तक ले जाना होगा। अगर भारत अपने पिछले प्रदर्शन को जारी रखने में सफल रहता है तो खिताब की तरफ कदम बढ़ाने से उसे रोकना विरोधी टीम के लिए काफी मुश्किल होगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: फुटबॉल हॉकी की बात हमने कर ली और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का अंतिम मैच कल चेन्नई में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। तीसरे मुकाबले से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है और भारत इस मैच में भी जीत का प्रबल दावेदार है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी भारतीय टीम का इरादा तीसरे मैच को जीतकर क्लीन स्वीप का होगा। टीम की निगाह KL राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। उधर किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। ऐसे में इस सीरीज के हर मैच में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की पैनी निगाह रहेगी। BCCI ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन पूरा करने के बाद इस मैच के लिए हर्षित राणा को टीम में शामिल किया है। यह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत को चोटिल नीतीश कुमार रेड्डी की अनुपस्थिति में निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का विकल्प भी मिलेगा। इससे टीम प्रबंधन को ब्रिटेन के दौरे से पहले उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करने का मौका मिलेगा। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो उसने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले 2 वनडे में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं किया है। उसकी टीम हालांकि जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। इसके लिए उसे खेल के तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: क्रिकेट की एक और खबर। दांबुला में वनडे फॉर्मेट की त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। आज अफगानिस्तान ने आखिरी लीग मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ 103 रन के बड़े अंतर से हार गया। इस वजह से भारतीय टीम की फाइनल में जगह सुनिश्चित हो गई। और अब बात एथलेटिक्स की। स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज से कतर में शुरू हो रहे दोहरा डायमंड लीग में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये नीरज का इस एथलेटिक्स सत्र में पहला मुकाबला है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात दोहा में डायमंड लीग में जज्बे और जुनून के साथ प्रतियोगिता का आगाज करेंगे। इस स्टार खिलाड़ी ने 2023 में दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर के साथ खिताब अपने नाम किया था। वहीं 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरा स्थान भी हासिल किया। पिछले वर्ष नीरज ने इसी मैदान पर 90 मीटर का आंकड़ा भी पार कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि उन्हें 90.23 की दूरी प्राप्त करने के बाद भी रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। नीरज चोपड़ा कुछ समय से चोट के कारण मैदान से बाहर थे। नीरज हाल ही में स्विट्जरलैंड में ऑफ सीजन प्रशिक्षण शिविर में पीठ की चोट से उबर रहे थे। भारत का ये करिश्माई खिलाड़ी आखिरी बार पिछले वर्ष सितंबर में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मैदान पर उतरा था। ऐसे में लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे नीरज के लिए मैदान पर कड़ी चुनौती इंतजार कर रही है। नीरज ने कहा, इस प्रतियोगिता के लिए स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और पूरी तरह से फिट हैं।
4: This is my first competition for the season, so I will try my best. I feel really good. I feel fit.
3: नीरज को श्रीलंका के खिलाड़ी सहित अन्य खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। वर्तमान विश्व रिकॉर्ड धारक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का भी हालिया प्रदर्शन शानदार रहा। पथिरागे ने इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो किया था। त्रिनिदाद और टोबैगो के मौजूदा विश्व चैंपियन केशोर्न वॉलकॉट, ग्रेनाडा के पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स और केनिया के जूलियस योगो भी शामिल हैं। ऐसे में आज सभी प्रशंसकों की निगाहें वापसी कर रहे नीरज और एक रोमांचक मुकाबले पर होंगी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और एक अच्छी खबर, चीन के गुइयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हो गई है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल के मैदान की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
6: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
5: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
6: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
5: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
6: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
5: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
7: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग ढाई घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This disbursal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, "In the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality." He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
11: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
10: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, "The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry."
11: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
10: Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya said that the Modi government has implemented the 4 important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Gold Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology.
12: President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Center and a mega health camp at the subdivisional hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. She also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi block, the Brahma Kumari's Matrushakti Bhavan, a special circuit house, and the newly operational Rai Rangpur Police District. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is a primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the Apex Court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The Apex Court called for a regulatory body to effectuate the fundamental right to walk on demarcated footpaths. It said such regulator will maintain institutional integrity by taking independent and objective decisions without governmental or industrial control. The declaration by the top court came in an unfortunate motor accident compensation case where a father lost his 5-year-old son while taking him to school. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
13: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
12: Mr. Singh said India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain integral and inalienable part of India.

0: towards 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. On to sports. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-finals in the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. She will next face South Korea's Park Hae-yeon in the semi-finals tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Hae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एकर तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार ह किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना, मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 दिन बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 दिन के अंदर मानसून के आय के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। ए अभियान के तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना मन के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है बताइन कि नियन निलारार योजना के सफलता ला आगो बढ़ात रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 23 जिला में 31 योजना मन के संतृप्तिकरण सुनिश्चित करे जाही। उमन किहिन कि तकनीक आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग, विभाग के समन्वय और जवाबदेह व्यवस्था ले लोगन मन ला बेहतर सेवा उपलब्ध कराए जाही। मुख्यमंत्री है किहिन कि हरेक परिवार तक शासन की योजना पहुंचे ले ही विकसित छत्तीसगढ़ के सपना साकार होही। उमन बताइन कि अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, आवास और रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास और बुनियादी नागरिक सेवा ल शामिल करेगे है। मुख्यमंत्री है बताइन कि अभियान के क्रियान्वयन 3 चरण में करे जाही। पहली चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण करे जाही। पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ा के आधार में संभावित परिवार मन के पहचान करके ए योजना पर बेसलाइन तैयार करे जाही। उन्हें दूसरिया चरण में ग्राम क्लस्टर और विकासखंड स्तर में विशेष संतृप्तिकरण शिविर रखे जाही। इस शिविर के माध्यम ले पात्र हितग्राही मल्ला योजना ले जोड़े जाही और जरूरी दस्तावेज और सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करे जाही। तीसरैया और आखिरी चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के प्रक्रिया के माध्यम ले योजना मन के प्रगति के आकलन करे जाही। संग्रह जरूरत के अनुसार सुधार के कदम घलो उठाए जाही। केंद्र सरकार ह किसान मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना, मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के अवधि 15 दिन बढ़ा दे है। यह निर्णय प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत ले गए है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम प्रदेश के किसान मन ला बाढ़े बेरा के फायदा उठाए और पास के सहकारी समिति में जाके अपन उपज बेचे के अपील करीन है। ओमन किहिन कि एकर ले किसान बाजार के उतार चढ़ाव ले बांची और ओमन ला फसल के उचित दाम मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: काली पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ह बताईस कि देश भर में 94 करोड़ ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में सीधा 18,880 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि अंतरित करे जाही। एक किस्त ले 2,18,00,000 ले ज्यादा महिला किसान मन लघलो फायदा मिलही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र सरकार के 12 बछर पूरा होए के मौका में प्रदेश भाजपा कोतिले विशेष जनसंपर्क अभियान चलाए जाते। इही कड़ी में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू हा मुंगेली में वरिष्ठ नागरिक मन ले सौजन्य भेंट करीन। इस दौरान श्री साहू हा केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजना विकास कार्य और आने आने उपलब्धि के जानकारी दीन और ओमन ले गोटबात करीन। उन्हें गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा में छायाचित्र प्रदर्शनी और पंजीकरण शिविर के आयोजन करेगीस। इति रायपुर जिला के आरंग में राखे गए शिविर में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत सिंह साहब केंद्र और राज्य सरकार के योजना मन के जानकारी दिन। सुनैया मल्ला बता दें कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऊपर केंद्रित रही। एक तहत रायपुर के योग प्रशिक्षक अमित तिवारी ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 20 जून के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार को थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA इतवार के होवैया राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG के पुनर्परीक्षा में शामिल होवैया उम्मीदवार मन पर एक दिन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA स्पष्ट करे है कि जम्मू आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल ओखर सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले भेजे जाही। एजेंसी है उम्मीदवार मनला सलाह दे है कि NTA भेजे गए कोनो भी संदेश ऊपर भरोसा करे के पहली नीला सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाव के जांच कर लेवे। इही बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है नीट परीक्षा में शामिल होवैया परीक्षार्थी मन के सुविधा पर विशेष रेल सेवा के व्यवस्था करे है। रेलवे कोतिले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के संचालन के 20 और 21 जून के करे जाही। इखर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुरुक तक करेगे है। यात्री मन के अतिरिक्त भीड़ ल देखत 10 ठीन ट्रेन में 40 अतिरिक्त सामान्य कोच घलो लगाए जाही। इति नीट UG के परीक्षा परिणाम और प्रदेश प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी मन में बढ़त मानसिक तनाव ल देखत बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा शुरू करे है। ये सुविधा मनोरोग विभाग डहाले उपलब्ध कराए गए है। विद्यार्थी 18 जून ले 2 जुलाई तक मोबाइल नंबर 94255023353 में तनाव चिंता काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया ले जुड़े समस्या पर विशेषज्ञ मन ले सलाह ले सकें। राज्य सरकार है संजय अग्रवाल ला छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त करे है। चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग डहाले इस संबंध में आदेश जारी कर दे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है श्री अग्रवाल ला नियुक्ति में बधाई दिन है। उमन कहिन कि योग स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण के महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री है भरोसा जताइन कि श्री अग्रवाल के अगुवाई में प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार और जन जागरूकता ला नवा गति मिली। इस बीच नवनियुक्त अध्यक्ष संजय अग्रवाल है आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले रायपुर स्थित उखर निवास में सौजन्य भेंट करीन। इस दौरान योग के संवर्धन और प्रदेश में योग संबंधी गतिविधि ल और ज्यादा प्रभावी बनाए ले जुड़े विषय मन ऊपर चर्चा हुई। प्रदेश में रेत उत्खनन परिवहन और भंडारण ऊपर सरलक कार्रवाई करे जाते। इही कड़ी में आज बलौदाबाजार भाटापारा जिला में राजस्व और पुलिस के संयुक्त टीम अवैध रेत परिवहन करत 10 टीम

0: आई वाला जब्ती करे हे। सिमगा एसडी महा बताइन कि सिमगा गरा जांच अभियान चलाए जात रहीस। इही दौरान गाड़ी मनला रोक के परिवहन पास संबंधी दस्तावेज मांगेगीस, लेकिन 10 वाहन के चालक मन को तीले दस्तावेज नहीं दिखाएगीस, जेखर बाद टीम हा पंचनामा तैयार करके आगू के कार्रवाई करिस। उती बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी के अगुवाई में खनिज विभाग और पुलिस के टीम हा मिंगाचल नदिया में पाछू देर रतिया छापा मार के रेत उत्खनन करत जेसीबी पोकलेन मशीन और 4 वाहन ला पकड़िस। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 3-4 के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून के आए के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी विदर्भ ले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होवत तमिलनाडु तक 1 द्रोणिका बने हुए है। एकर असर ले अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। कांग्रेस राज्य सरकार ले बिजली के दर में करे गए बढ़ोतरी ला तुरते वापस लेके और उपभोक्ता मन ला राहत दे के मांग करी से। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव मुंगेली में रखे गए पत्रकार वार्ता में आरोप लगाई कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सरलग 5वां घाव बिजली के दर में बढ़ोतरी करे गए है, जेखर स्थिति घरेलू व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ता मनु पर अतिरिक्त आर्थिक बोझा पढ़ी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रदेश में सुग्घर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू करे जाही। एक तहत सरकार के जन कल्याणकारी योजना के फायदा हरेक पात्र हितग्राही तक पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। केंद्र सरकार है किसनहा मनला राहत देत रबी विपणन बछर 2026-27 बर चना मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी के बेरा 15 बढ़ा दे है। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अवैया 3-4 के अंदर मानसून के आय की संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी है, अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
3: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
4: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज, ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा, तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
3: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
4: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है, तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो, लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
3: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
5: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओ इसका काफी

0: पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया। और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसकी वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओवादी तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं। और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के इंसर्जेंट थे, सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट, वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे, वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं

0: उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ, उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ, जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज्ड है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसको पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम

0: सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए। और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा, और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा, हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं MP नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और 3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें, या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये 3 जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय CRPF के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया, और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे, सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के, उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहाँ श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं, दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहाँ पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफ़ी लाभ पहुँच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफ़ी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफ़ी तादाद में फोर्सेस पहुँच रहे हैं वहाँ पर और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कई जिलों में जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहाँ पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में, या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
2: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज़्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
1: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
0: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है विगत 12 वर्षों में, हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है।

0: मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये

0: इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमिना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है, जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं, और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात
1: जी
0: करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं, और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है, और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है, और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम पर्यावरण। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में लीजिए आज सुनिए पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विश्व मोहन भट्ट का गिटार पर बजाया राग हेमंत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें। यादें में आइए सुनते हैं फिल्म

यादें में आई हैं, आपको सुनवाते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज में आशा भोसले को कमीर कमर जलालाबादी का लिखा गीत और संगीत ओपी नैयर का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं, सिमगा से मोनिका जैन, बीना जैन और आदेश जैन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार माखीजा, माटापारा से नारायण यदु, पुनिया यदु, चोवाराम वर्मा और दुलारी वर्मा, बठेना पाटन से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी और ज्योति वर्मा, चौटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषकृत वर्मा, बेलरगांव से हवा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार साहू, लखी सिन्हा, सुरेश कुमार सारथी और कमलकांत सारथी, रुआबांधा भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सौरभ जैन, श्रेया जैन, शुभम जैन और शौर्य जैन, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, पटपट डोंगर से राम गोपाल ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गीत।

फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत अभी आप सुन रहे थे। लीजिए सुनिए अगला गीत। फिल्म चोरी चोरी से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा गीत और संगीत है शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी श्रोता साथी ने। दूल्हापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। नलेश्वर नगर नखेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, सहसपुर लोरमी से मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद बड़कू साहू और दुर्गेश कुमार। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और आसमा खातून अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असलम अंसारी, भाटापारा दतरेंगे से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा, अमलेश्वर से सूरज ठाकुर, सुजला ज्योति रेयांश ठाकुर, गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन, श्रीमती कचरी देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋचा देवांगन, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान, सिकंदर असरफ खान, अल्फैज खान, सादिया खान और अयाज खान, ग्राम मुलमुला बेमेतरा से सेखन राम साहू, अमृका बाई, लेखनी रोशनी चहक साहू, यहीं से नेत राम साहू, मनीराम लक्ष्मी साहू, बिंदु डिंपल और रामेश्वर साहू, भाटापारा महादेव घाट से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश और तारनी ठाकुर, पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, घनश्याम साहू, अलका जाह्नवी और नूतन साहू, वर्धमान रेडियो श्रोता परिवार सिमगा से सभी श्रोता साथी, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म चोरी चोरी का ये गीत।

आइए सुनते हैं अगला गीत और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। बंगला मटिया जिला बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रम्बिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। सरमुंदा से सूरज कुमार दामले, हेमा दामले, कांति दामले और राजेंद्र कुमार दामले। हटरी चौक बिलाईगढ़ से रजनी देवांगन, प्रियंका देवांगन, रेणु देवांगन। जुड़वा चौक सरंगपाल से रामचंद्र देवांगन, शीतल, सुनैना, पिंकी, यश, युवराज सिंह और गीता देवांगन। भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर। सोनड्डी से सुब्रत चौधरी। महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। दिल्ली शहर मुरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अमलीपदर देवभोग से निकुंज तिवारी, लाचू तिवारी और ममता तिवारी।

खैरागढ़ से दीक्षा और शिक्षा, रविन्द्र अग्रवाल, झरना, प्रेरणा और पुष्पलता, करीभदर से झावेंद्र विश्वकर्मा, भाविका, गिन्नी, लल्ली, श्रद्धा निर्मलकर और पुरुषोत्तम निर्मलकर, पेंशनबाड़ा रायपुर से सोमनाथ यादव, वंदना यादव, सूर्यप्रकाश यादव, शीला यादव, कनक, गुनगुन यादव, बेबी अदिति और तन्मय यादव, दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, महामायापारा ग्राम दरचूरा से फिरंता साहू, दुलौरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। आइए सुनते हैं आप सबके फरमाइश पर फिल्म रानी रूपमती में मुकेश कुमार को, भारत व्यास का लिखा गीत और संगीत एस एन त्रिपाठी का।

यादें, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा, भाटापारा से रामकुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत, दतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना और लक्ष्मीना यदु, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश देवांगन और आशीष देवांगन, रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू और डिकेश कुमार, शिवचौक साकरा भूमिया से मनोज निषाद, प्रतिभा निषाद, पूर्वी निषाद और खुशांत निषाद, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव, भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लबी श्रीवास्तव, बाजार पारा बेमेतरा से सनत कुमार यादव, राजू दिलीप यादव, बरातू यादव और आदित्य यादव, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजिद कुरैशी, रेहाना बेगम, मोहम्मद साजिद, माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार से लावण्या साहू, उपासना साहू, देवराज साहू, ओम कुमार साहू, पुष्पराज साहू और प्रभुराम साहू, सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार यादव, अमित कुमार यादव और अमीन कुमार यादव, यहीं से अमृता यादव, ईश्वरी यादव, पार्वती यादव और लक्ष्मी यादव, सिमगा से भारती सेन, सुनंदा सेन, सुष्मिता सेन, विनीता सेन और पिंकी सेन। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म प्रेम पर्वत में लता मंगेशकर को गीत के बोल जान निसार अख्तर के और संगीत जयदेव का।

लीजिए सुनते हैं अगला गीत, और इस गीत की फरमाइश करने वाले श्रोता साथी आप सभी हैं। जुर्मानी दुर्ग से सुरत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र किशन साहू, कुमारी सुनीता और ऋषवंत साहू, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, चंद्रहास, संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू, ग्राम भिलौरी बावन लाख बेमेतरा से रोहिणी डागेश्वर साहू, खुलासा देवी साहू, देवव्रत राघवेंद्र राज साहू, हेमनत कुमार साहू, बेबी विधि दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू, शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा और ग्रंथ वर्मा, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे, पूजा अंबादे, कोटा रायपुर से योग्यता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा, यहीं से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश जैन, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, अहिवारा दुर्ग से डबल कुमार, डब्बू धीवर, जतिन हेमनराज बाबू धीवर, संजय कुमार, इंद्रजीत राजू धीवर, लक्ष्य धीवर, आंचल माही नानू, पार्थ भावना अनमोल और राजा धीवर, अछोटा धमतरी से बिसतराम दिवांगन, मानकीबाई, गणेश राम, रोहित राम, राजेश कुमार, गीतेश और सेजल धवल, लवन काव्य और तेजस्वी दिवांगन, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, खट्टी महासबुन से सुभाष शर्मा, छाया शर्मा, कुमुदिनी शर्मा और ओमकार शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म चौदहवीं का चांद में मोहम्मद रफी को, गीत के बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का।

0: चौदहवीं का चांद। इस फिल्म में अभी आप मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। गीत के बोल शकील बदायूनी के थे और संगीत था रवि का। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम यादें अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की चार नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
3: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency (NTA) today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27.

0: Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।